एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर

0: रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

यानी हमें समय निकाल कर अपने मन की बात को सुनना चाहिए, अपने मन से बातें करना चाहिए। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का में ये भक्ति रचनाएं।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि दिन में एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से आप मिलने से चूक जाएंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 249। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंगलीकर। भाग दूसरा।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7 बजे से 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा, इसके अंतर्गत सुनेगा प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां, इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुत करता है सुबैर खान। ग्यारह बजे से रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, इसके अंतर्गत सुनेगा डिजिटल होते रिश्ते मुहावरों की दुनिया, मुंह में राम बगल में छुरी, सखी विशेष के अंतर्गत उपासना टाकू फिनटेक कंपनी मोबीक्विक की सह संस्थापक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से बातचीत और हल्की फुल्की बातें, सेहतमंद भोजन सुनिएगा, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। शाम 5:30 पर ताराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 शाम सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। आपको फिर से बता दें, श्रृंखला सायंकालीन संध्य प्रकाश राग, कलाकार गायिका विदुषी आरती अंगलीकर का भाग दूसरा, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस, हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन, बाज आए ऐसे फैशन से, लेखन नाजनीन का, निर्देशन है जयदेव शर्मा कमल का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे छाएगी, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 249।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने

अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में सुनिए राग पूर्वी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था पूर्या दनाश्री, बहुत ही खूबसूरत राग है। आज उन्हीं स्वरों में हम शुद्ध मध्यम को जोड़ देंगे तो बन जाएगा राग पूर्वी का सप्तक। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया है, स्वर वही है पूर्या धनाश्री के, उसमें हमने सिर्फ शुद्ध मध्यम को जोड़ देने से कितनी खूबसूरत कलाकृति बन रही है। इसमें रिखभ और धैवत कोमल हैं, दोनों मध्यम हैं, तीव्र और शुद्ध। जैसा कि हम जानते हैं ये संधि प्रकाश राग है, इसमें अन्य सभी जो स्वर हैं शुद्ध हैं, वर्जित स्वर कोई भी नहीं। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर गंधार और संवादी निखात। गायन का समय वही जो संधि प्रकाश रागों का होता है। राग पूर्या धनाश्री से इसको इस तरह से हम अलग रख सकते हैं कि पूर्या धनाश्री का जो सप्तक है वो नीरे गा जाता है और राग पूर्वी का जाता है नीसा रेगा।

राग पूर्वी का जो चलन है वो पूर्या धनाश्री से किस तरह अलग है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हालांकि इसमें शुद्ध मध्यम के होने के कारण इसकी एक अलग छवि बनती जरूर है, लेकिन इसका जो चलन जाता है

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, किसी फिल्मी गीत की रचना एक राग को आधार बनाकर की जाती है, मगर उसमें अन्य रागों की छाया भी अक्सर दिखती है। आइए सुने ये गीत जो हमने फिल्म कोतवाल साहब से चुना है। इस गीत में संगीतकार रविंद्र जैन ने राग पूर्वी को आधार बनाकर किस खूबसूरती से अन्य रागों का भी सम्मिश्रण किया है। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आवाज है आशा भोसले की। लीजिए गीत सुनिए।

0: सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में राग पूर्वी पर आधारित संगीतकार रविंद्र जैन की ये सुमधुर रचना। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी सुप्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं छोटी छोटे बाबू फिल्म के इस गीत से।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं छोटे बाबू फिल्म के इस गीत से।

गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और इस गीत को संगीत से संवारा था मदन मोहन ने। और इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना उसे हमने छोटे बाबू फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज़ें थीं, इंदिवर की रचना थी और मदन मोहन का संगीत था। अभी आपने गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गीत सुना। आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन को। उनकी भावपूर्ण और मधुर धुनें हमारे दिलों को सदैव हमेशा आकर्षित करती हैं। ये कर्णप्रिय संगीत हमारी अमूल्य धरोहर है। सुनते हैं।

0: भाई भाई फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गीता दत्त की आवाज थी। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था, मदन मोहन ने धुन बनाई थी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
0: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब एक बहुत छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद फिर से हाजिर होंगे।

बैंक मैनेजर फिल्म का गीत आपने सुना। मन्ना डे के स्वर में अनवर फरूखाबादी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती से। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: संगीतकार रोशन के सजाए संगीत से ये गीत अभी आपने सुना। इसे लिखा था प्रेम धवन ने और हीरा मोती फिल्म का ये गीत था। आवाजें सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार रोशन को। संगीतकार रोशन अपनी मधुर शास्त्रीयता, सरलता से परिपूर्ण धुनों से संगीत जगत को उन्होंने अमूल्य विरासत दी है। एक और मीठा सा गीत आइए सुनते हैं।
1: मैं झोला

मैंने जीना सीख लिया। इस फिल्म का गीत अभी आप मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुन रहे थे, रचना आनंद बख्शी थी। इस गीत को संगीतकार रोशन ने संगीत से सजाया था। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था, रंगीन रातें फिल्म से था, शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजें थी, केदार शर्मा के बोल थे और रोशन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के इस सुविचार से, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो।

और अब जानकारी लेते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो आज ही के दिन यानी 14 जुलाई को इतिहास में घटित हुए। 2003 में आज ही के दिन रूस की येलेना एसेनबायेवा ने महिला पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1789 में आज ही के दिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने पेरिस की कुख्यात जेल बैस्टिल पर धावा बोलकर उसे गिरा दिया। 1850 में आज ही के दिन डॉक्टर जॉन गोरी ने पहली बार मशीन के जरिए बर्फ जमाने का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। 1965 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यान मरियर 4 पहली बार मंगल ग्रह के सबसे करीब से गुजरा और वहां से तस्वीरें भेजी।

और अब जान लेते हैं उन महापुरुषों को जो आज ही के दिन जन्मे। ऑस्ट्रिया के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार गुस्ताव क्लिम्ट का जन्म आज ही के दिन 1862 में हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकी एनिमेटर जिन्होंने टॉम एंड जेरी और स्कूबी डू जैसे कार्टून बनाए। विलियम हदना, इनका जन्म 1990 में आज ही के दिन हुआ।

प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्त का जन्म आज के दिन 1900 ईस्वी में हुआ। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश आगरकर, इनका जन्म आज के दिन 1856 में हुआ। और आइए अब जान लेते हैं उन महापुरुषों को, उन विभूतियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनिस, इनका निधन आज ही के दिन 2003 में हुआ। जाने माने भारतीय चिकित्सा विज्ञानी रमन विश्वनाथन, इनका निधन आज ही के दिन 1982 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध 1950, 60 और 70 के दशक के बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक मदन मोहन का निधन आज के दिन 1975 में हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का निधन आज ही के दिन 1896 में हुआ।

इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के बाद रुक करते हैं गीत संगीत की ओर, सुनते हैं गीत गाता चल फिल्म का ये गाना।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब जानकारी लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की। वीबीजी रामजी योजना के नए कार्यों पर 9 अगस्त तक रोक। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को मिलेगी नई गति। मनरेगा के बदले स्वरूप विकसित भारत रोजगार और आजीविका सृजन यानी वीबीजी रामजी योजना को लागू किया गया है। इस नई व्यवस्था से ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना निर्माण को गति मिलेगी और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। वीबीजी रामजी योजना 4 श्रेणियों में लागू की गई है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी व जिले में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। योजना के तहत नहर निर्माण, बाढ़ व ड्रेनेज चैनल, तालाबों का जीर्णोद्धार, सिंचाई कुएं, सूक्ष्म सिंचाई चैनल, भूमि सुधार, पौधारोपण, छत वर्षा जल संचयन जैसे कार्य किए जाएंगे। राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के लिए बालक खिलाड़ियों की सूची जारी। राज्य स्तरीय कबड्डी के लिए चयन प्रतियोगिता संपन्न। रोहतास जिला कबड्डी संघ के तत्वाधान में जूनियर बालक कबड्डी खिलाड़ियों का चयन स्थानीय न्यू स्टेडियम फजलगंज में किया गया। इसकी जानकारी देते हुए रोहतास जिला कबड्डी संघ की सचिव दिव्या कुमारी ने बताया कि संघ के अध्यक्ष डॉ आलोक कुमार तिवारी की देखरेख में चयन प्रक्रिया हुई। तकनीकी अधिकारी मनोज कुमार तथा कोषाध्यक्ष जिला कबड्डी संघ के संयोजन में यह चयन कराया गया।

चतुर्मास पावन महोत्सव के अवसर पर भभुआ के परसिया में आयोजित धार्मिक प्रवचन में संत जीयर स्वामी जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मानव जीवन धर्म कर्म और भक्ति के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में बंधन और मोक्ष का मूल कारण मन ही है। जिले में 371 घरों में लगा सोलर संयंत्र। आम नागरिकों को सस्ती सुलभ एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं रूफ टॉप सोलर अधिष्ठापन में तेजी लाने के लिए जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर प्रणाली के प्रति जागरूक करना तथा अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ना था।

कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में भूमि विवाद, अतिक्रमण, दाखिल खारिज, राजस्व प्रमाण पत्र, लोक शिकायत तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित कई आवेदन प्राप्त हुए। एसडीएम ने एक एक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को मामलों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रोहतास समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में डीएम दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक हुई। इसमें सभी विभागों के लंबित कार्यों, अंतर विभागीय समन्वय तथा विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

कैमूर में 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के निदेशक के निर्देशानुसार 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा। स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी के बाद सुनते हैं एक और गाना, फिल्म गीत गाता चल।

और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हेलीकॉप्टर से वाल्मीकि नगर, राजगीर और कैमूर की करे सैर, 18 से उड़ान। सरकार के इस योजना को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

प्रभात खबर के शब्द हैं, बिहार सरकार ने हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों से राज्य के पर्यटन स्थलों की यात्रा की नई अनोखी योजना शुरू की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति पर्यटन निगम के काउंटर पर या वेबसाइट पर बुकिंग कराकर पटना, राजगीर, कैमूर और वाल्मीकि नगर की हवाई सैर कर सकेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की शुरुआत की। आगे प्रभात खबर की सुर्खी है, इको टूरिज्म के लिए 29 डैम और 274 तालाब पीपीपी मोड पर होंगे विकसित। राज्य के इको टूरिज्म के लिए 29 चेक डैम व 274 तालाब, पोखर, झील व आर्द्र भूमि को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। पहाड़ों पर एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से पर्यटकों को बिहार की प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ रोमांच की नई दुनिया की सैर कराई जाएगी। ये बातें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कही। वह सोमवार को एक होटल में इको टूरिज्म पर आयोजित इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी इको टूरिज्म वाले स्थानों पर होटल, रेस्टोरेंट, मार्केटिंग से लेकर बस सेवा भी शुरू की जाएगी। नगर निकायों का होगा पुनर्गठन, 30 अगस्त तक मांगे गए प्रस्ताव। इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, शहरों की बढ़ती आबादी और आधारभूत संरचना के अनुरूप नगर निकायों के पुनर्गठन की तैयारी है। राज्य सरकार ने 30 अगस्त तक जिलों से इस आशय का प्रस्ताव मांगा है। दो या अधिक नगर निकायों का विलय, शहरों की सीमा का विस्तार, नए नगर निकायों का गठन तथा नगर पंचायतों को नगर परिषद और नगर परिषदों को नगर निगम का दर्जा देने का विचार किया जाएगा। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और शहरों के फैलाव को देखते हुए सरकार ने जनगणना 2027 के बाद बड़े स्तर पर नगर निकायों के पुनर्गठन की योजना का काम प्रारंभ कर दिया है। आगे दैनिक जागरण की सुर्खी है, हवाई किराए पर 2 हफ्ते में नियम पेश करे केंद्र सरकार। हवाई किराए में मनमानी पर अंकुश लगाने और दिशा निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत बनाए गए नियम 2 सप्ताह के अंदर उसके समक्ष पेश करे। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। देश भर में 80 से ज्यादा टोल प्लाजा हटेंगे, इस खबर को हिंदुस्तान ने अपने फ्रंट पेज पर जगह देते हुए लिखा है। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार के एक आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश भर में लगभग 80 से ज्यादा प्लाजा ऐसे हैं जिनकी पूंजीगत लागत पूरी हो चुकी है या वे 60 किलोमीटर के भीतर गलत तरीके से वसूली कर रहे हैं। सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे ऐसे टोल प्लाजा को 1 अक्टूबर से समाप्त करने का फैसला कर लिया है। आगे हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान और अमेरिका जंग में रूस की एंट्री। अमेरिका और ईरान के बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रूस ने अपना सबसे सुरक्षित और आधुनिक हवाई कमांड विमान TU-214PU तेहरान भेजा है। रूस ने स्पष्ट किया है कि वह मध्य पूर्व में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के F-35 जेट्स और युद्धपोतों की तैनाती के जवाब में रूस का डूम्सडे विमान भेजना वॉशिंगटन के लिए कड़ा संदेश है। और अब एक नज़र आर्थिक एवं खेलकूद जगत से। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रही। हालांकि दिन में आईटी कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी आने से बाजार ने अधिकांश नुकसान की भरपाई कर ली और लगभग सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स कारोबार की शुरुआत में 712 अंक तक टूट गया था, लेकिन बाद में सुधार आया और अंत में 47.01 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77,616.40 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE का निफ्टी भी 4.10 अंक की हल्की बढ़त के साथ 24,211 अंक पर बंद हुआ। सोना 1500 रुपए टूटा, चांदी भी फिसली, रुपया 27 पैसे टूटकर 95.65 प्रति डॉलर पर।

लॉर्ड स्टेडियम में भारतीय बेटियों ने रच दिया इतिहास। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम इसी महीने इंग्लैंड में हुए T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन भारतीय बेटियों ने इस निराशा को दूर करते हुए सोमवार को क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड स्टेडियम में इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 270 रन से करारी हार देकर इतिहास रच दिया। 141 साल के इतिहास वाले लॉर्ड्स में यह पहला महिला टेस्ट था और भारत ने इसे यादगार बनाते हुए मेजबान टीम को 457 रन के लक्ष्य के जवाब में 186 रन पर समेट दिया। हरमनप्रीत कौर लॉर्ड्स पर टेस्ट मैच जीतने वाली भारत की चौथी कप्तान बन गई है।

और अब मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 10 से 15 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% तथा दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पछिया हवा चलने का अनुमान है। और आज के इस अंक में यहीं तक। कल नए खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त संगीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार प्रभात सुनने के लिए चलते आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर

0: इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: Across 10 of the 11 active missions.
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवार

0: भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3 लाख शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है।

0: 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की

0: औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दिल जले फिल्म का गाना।

देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे दिल जले फिल्म का गाना। आवाजें थी कुमार सानू और आदित्य नारायण की। जावेद अख्तर की रचना थी, धुन बनाई थी अनु मलिक ने। पेश है श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

दोस्ताना फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। आनंद बख्शी की रचना थी, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाने को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झविंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ज्योति और रेयांश ठाकुर। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली झलना झा। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू रजनीश, आनंद आशुतोष, अमिताभ और गजेंद्र कुमार निराला। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गृह प्रवेश से।

आवाज़ भूपिंदर की, गुलजार की रचना है, धुन बनाई है कानू रॉय ने। इस गाने को सुनना चाहा है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारे राय कारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंज राज, आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे

0: पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
0: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आदमी खिलौना है। इस फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाज़ें थी मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता थे तेलंगाना बोनगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान फरहान, समायरा आज़मीन गुड़िया, थाना मोड़ गढ़नों का रोहता से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुल निशा सदा मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली शबाना और शाहबाज। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। गायक कलाकार हैं मुकेश, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गाने की फरमाइश की है फुटानी चौक नरहन स्ट्रीट से ललन मिश्रा, उदय कांत ठाकुर, अमन परासर, बीबी आराध्या और लल्लू पंडित। मिसिर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित सुमित, छोटू, बीके सुरगनैया। कलीर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकट प्रवीण, सदफ आरजू, साहिल अरमान, मशकूर आलम, शमा प्रवीण और बीबी अलीशा।

0: इसी गीत के साथ पसंद आपकी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज का ये सुरीला सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी संगीता के साथ, और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।
1: से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
3: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, शुगर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
2: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी at 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: अंदर से नहीं रुकी है गेंद सीमा रेखा के बाहर।
1: मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आम लोगों की शिकायतों की सीधी सुनवाई के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का शुभारंभ करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। कुल 40 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं नामांकन पत्र। कटिहार के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक युवक गिरफ्तार। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से गंडक, कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है तेजी से बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
2: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
1: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों की शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उपचुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस चुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए NDA की ओर से भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की ओर से रेखा गुप्ता, जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने नामांकन किया है। वहीं जनशक्ति जनता दल की ओर से वीणा मांडवी प्रत्याशी हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। राज्य सरकार ने नगर निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में 30 अगस्त तक विभिन्न जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 2 या अधिक नगर निकायों का विलय, शहरों की सीमा का विस्तार, नए नगर निकायों का गठन तथा नगर पंचायतों को नगर परिषद और नगर परिषदों को नगर निगम का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि 2025 में भी ऐसे प्रस्ताव मांगे गए थे, लेकिन जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमा के बदलाव पर रोक लगाई गई थी। प्रदेश में इको टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक सेल का गठन किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने पटना में आयोजित इको टूरिज्म इन्वेस्टर मीट में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस सेल के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों

0: को एक ही छत के नीचे सभी जरूरी सुविधाएं और स्वीकृतियां दी जाएंगी। श्री किशोर ने बताया कि यह सेल विभाग के मुख्यालय में कार्य करेगा। जलकुंभी शिल्प विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उद्योग विभाग और नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि इस पहल से जलाशयों में फैलने वाली जलकुंभी को मूल्य वर्धित शिल्प उत्पादों में बदलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे आय के अवसर बढ़ने के साथ ही महिलाओं और युवाओं को टिकाऊ रोजगार मिलेगा। वहीं विभाग के सचिव कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि इस परियोजना के तहत अगले 8 महीने में सहरसा और वैशाली के 200 कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत चयनित घरों में सोलर प्लेट लगाने का काम तेजी से किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 55,000 से अधिक लाभार्थियों के रिकॉर्ड यूएलए पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। श्री अमृत ने अधिकारियों को इस कार्य में लगी एजेंसियों के साथ समन्वय कर प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। कटिहार पुलिस ने कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि युवक द्वारा सोशल मीडिया चैट और ऑडियो कॉल के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियां, संवेदनशील स्थलों की जानकारी साझा करने तथा आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित सामग्री का आदान प्रदान किया जा रहा था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी और सहरसा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
3: दिनांक 14 जुलाई राज्य के दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी एवं सहरसा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले

0: 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, अररिया, मधेपुरा और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण के मैनाटाड़ में सबसे अधिक 169 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी और गंडक समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए कल दोपहर कोसी बराज से 172,435 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
1: भीमनगर कोसी बराज पर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए 20 फाटकों को खोल दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण बीरपुर के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने बताया कि पानी को डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध समेत सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
0: केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी का डिस्चार्ज 1,00,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बागमती नदी रून्नीसैदपुर के कटौझा में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं लाल बकैया नदी बैरगनिया के बोहाबाड़ी में लाल निशान के ऊपर बह रही है। इधर गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। राजगीर स्थित खेल अकादमी में 25 और 26 जुलाई को राज्य स्तरीय तैराकी चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर 42वीं सब जूनियर और 52वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम का चयन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्रन शंकर ने बताया कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर इस ओपन चयन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इच्छुक खिलाड़ी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
2: सब जूनियर एवं जूनियर स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल कराने का, ये सिलेक्शन ट्रायल प्रॉपर 50 मीटर स्विमिंग पूल में और सारे TSR के साथ आयोजित किया जाएगा। जो भी बच्चे इस स्विमिंग सिलेक्शन ट्रायल्स में भाग लेना चाहते हैं वो खुद एक गूगल फॉर्म भर के रजिस्टर पहले अपने आप को कर ले।
0: अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। लखीसराय जिले के कबैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला गली से पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में पहले से ही निलंबित चल रहे थे। किशनगंज के तेरापंथ भवन में टीबी उन्मूलन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की सहायता की अपील की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया, कहा गंगा पथ से हरिहरनाथ मंदिर तक रोप वे की तैयारी। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, भाजपा से नीरज, जन सुराज से पीके ने भरा पर्चा, नामांकन के बाद JJD प्रत्याशी गिरफ्तार, 4 घंटे बाद मिली जमानत। प्रभात खबर ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, दहेज हत्या में जमानत देने में सतर्कता बरते निचली अदालत। दैनिक जागरण लिखता है, लॉर्ड्स पर भारतीय बेटियों ने रचा इतिहास, पहले महिला टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराया। आज अखबार ने लिखा है, अगस्त से सरकारी अस्पतालों की सफाई संभालेंगी जीविका दीदियां। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, मुंगेर में उद्घाटन से पहले ही दरक गई 3,792 करोड़ रुपए से बनी 4 लेन सड़क, NHAI ने गठित की जांच टीम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आम लोगों की शिकायतों की सीधी सुनवाई के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का शुभारंभ करेंगे। बांकीपुर विधानसभा

0: चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। कुल 40 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं नामांकन पत्र। कटिहार के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक युवक गिरफ्तार। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से गंडक, कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है तेजी से बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर।

0: पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मलिका। कार्यक्रम आवाज़ लेकर हम हाजिर होंगे 10:05 पर। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। और भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार सुनिएगा 10:45 पर।

शाम का स्वागत कीजिए भक्ति संगीत कार्यक्रम से। कार्यक्रम वंदन में समय होगा शाम 5:10 पर। युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज बातें होंगी किताबों से कीजिए दोस्ती और कौशल विकास से उद्यमिता विकास, इस पर जानकारी दी जाएगी। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 से और भोजपुरी समाचार बुलेटिन आपको सुनवाएंगे शाम 6:05 पर आकाशवाणी।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम किसानवाणी लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:10 पर। भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे शाम 6:40 पर। गुड इवनिंग रोहतास सुनिएगा शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार आपको सुनवाएंगे शाम 7:25 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मनपसंद ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 7:50 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा हम पेश करेंगे रात्रि 9:00 से। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर। एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसरंग सुनाएंगे आपको रात्रि 10:00 से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने सुनना न भूलिएगा रात्रि 10:30 पर।

अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। गीत मल्लिका कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बलमा फिल्म का गाना। आवाजें हैं आशा भोसले और कुमार सानू की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

कयामत से कयामत तक, इस फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज़ थी उदित नारायण की। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत फिल्म कुर्बानी से। गायक कलाकार हैं कंचन मनहर और आनंद। इंदिवर की रचना है, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इसी गीत के साथ गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

सन 1948 में रोशन मुंबई चले आए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक हो गए। खुर्शीद अनवर उन दिनों फिल्म सिंगार को संगीत से सजाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान रोशन की भेंट हुई फिल्मकार किदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नैन में संगीत दिया। बावरे नैन के निर्माता थे गायक मुकेश।

का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, खेत से फाइबर, कारखाने से फैक्ट्री, फैशन से विदेश तक से प्रेरित भारत टेक्स 2026 का उद्देश्य वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश स्रोत, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित होना है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ओमान के पास होर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने

मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब तक 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं और 6 लापता है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों में इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़।

0: दोस्तों नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं आपके दोस्त मुमताज अहमद। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है आम लोगों की आवाज आप तक पहुंचाने की। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे शिवसागर प्रखंड के विश्रामपुर गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों सफाई क्यों जरूरी है, इसका आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि जो इलाका साफ रहता है, नाली गली की सफाई एक अंतराल के बाद होती रहती है, उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इसलिए दोस्तों हमें भी अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई पर ध्यान देते रहना चाहिए ताकि बीमारी फैलाने वाले कीड़े को किसी भी तरह से पनपने का मौका न मिल पाए। आसपास के क्षेत्र की सफाई के साथ साथ हमें पर्यावरण पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि पर्यावरण किसी तरह से दूषित न हो पाए। इसके लिए ज़रूरी है पेड़ पौधों का लगाना और उसकी देखभाल करना। इसलिए दोस्तों आप अपने आसपास के पेड़ पौधों की सुरक्षा ज़रूर करते रहें और संभव हो तो पौधे लगाते भी रहें ताकि इन्वायरमेंट दूषित न हो पाए और पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी न हो पाए। दोस्तों रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के विश्रामपुर गांव के लोगों से हमने बात की। विश्रामपुर गांव मोहम्मदपुर पंचायत में पड़ता है और कैमूर पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है। गांव में आने जाने के लिए पक्की सड़क तो बन चुकी है। विश्रामपुर गांव से ज़िला मुख्यालय सासाराम आने जाने के लिए सवारी गाड़ी चलती रहती है। फिर भी हमने गांव के लोगों से जानना चाहा कि विश्रामपुर गांव में नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए अभी तक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। विश्रामपुर गांव के कई लोग हमारे बीच खड़े हुए हैं, आइए सुनते हैं विश्रामपुर गांव के लोग अपने गांव में मिल रही सुविधाओं के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। नाम अपना बता दीजिए।
1: शंकर दयालराम।
0: गांव का नाम?
1: विश्रामपुर।
0: पंचायत?
1: मोहम्मदपुर।
0: मोहम्मदपुर पंचायत में पड़ता है विश्रामपुर गांव। आप अपने गांव की गली के बारे में सबसे पहले बताइए। सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है या कुछ बनानी अभी बाकी है, चाहे छोटी गली हो या बड़ी गली हो?
1: सर पहले पक्कीकरण हुआ था, अब सब टूट गया है, अब खत्म हो गया।
0: सभी गली का हो चुका था?
1: पहले हो चुका था, अब सब टूट फूट गया है। गली नाली
0: टूट गया है तो आने जाने परेशानी हो रही है?
1: हाँ परेशानी हो रही है।
0: नाली बनेगी है कि नहीं आपके यहाँ की गलियों में?
1: पानी है, सब फूट टूट गई है।
0: सभी गली में बन चुकी है या कुछ बाकी भी है?
1: ना बाकी नहीं है।
0: जब आपके यहाँ की लगभग सभी गलियों में नाली बन चुकी है तो बनी हुई नाली से घर का पानी निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है या घर में जमा रहता है?
1: गली में जमा रहता है सर।
0: नाली बनने के बाद भी?
1: नाली बनने के बाद भी घर में जमा रहता है।
0: इसकी वजह क्या है?
1: सब टूट फट गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए सब मैंने घास जम गया है।
0: बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
1: बिजली रहती है 24 घंटा।

0: बिजली का वोल्टेज
1: सब ठीक रहता है
0: ठीक रहता है
1: जी सर।
0: बिजली बिल के बारे में बताइए, कम आती है ज़्यादा आती है या ठीक आती है?
1: सब बराबर आता है,
0: ठीक आती है।
1: हाँ ठीक आती है।
0: 125 यूनिट फ्री कर दी गई है,
1: सब काट करा रही है,
0: तो इसका लाभ मिल रहा है लोगों को?
1: हाँ मिल रहा है,
0: सभी को मिल रहा है। नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
1: नहीं, नल का गड़बड़ हो गया है।
0: नल लगाई गई है आपके घरों में?
1: गाँव में लगी है, बाकी नल का पानी नहीं आ रहा है, नल सब फूट गया है।
0: अभी नहीं आ रहा है या कभी नहीं आया?
1: कभी नहीं आ रहा था।
0: कभी नहीं आया?
1: कभी नहीं
0: आया। नल लगाई गई थी?
1: नल लगाई गई थी, पानी कभी नहीं, उधर सब काम खत्म हो जा रहा था, वो भी नहीं आ रहा है।
0: आपके गांव में कितना वार्ड है?
1: दो वार्ड है।
0: दो वार्ड है, दोनों वार्ड में पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है?
1: नहीं, पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है।
0: टंकी बनाई गई है?
1: टंकी बनाई गई है,
0: बोरिंग गलाई गई है।
1: हाँ, बाकी पानी नहीं आ रहा है।
0: पानी नहीं आ रहा, तो आप लोग पानी पीते कैसे हैं?
1: सब इधर उधर से मांग कर किसी के समर्थन
0: अपना निजी साधन से।
1: हाँ।
0: कुआं है पुराना आपके यहाँ?
1: कुआं है तो कुआं सब सूख गया है,
0: सूख चुका है, कामयाब नहीं है?
1: ना कामयाब नहीं है सर।
0: खेती करते हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
1: धान गेहूँ।
0: धान गेहूँ लगाते हैं।
1: अब तो देखिए रहे पानी पीना मर रहा है।
0: पटवन का मुख्य साधन क्या है आपके यहाँ?
1: बस बरसात है,
0: बारिश के पानी पर डिपेंड है।
1: बारिश के पानी से नहर भी आया तो बाहर नहीं कटा,
0: बाहर नहीं होने की वजह से नहर का पानी नहीं आ पा
1: नहीं आ रहा है।
0: अगर बारिश नहीं हुई तो
1: पड़ती रह जाएगा खेत।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं आप लोग?
1: धान गेहूं।
0: धान गेहूं, सब्जी की खेती नहीं होती है?
1: सब्जी का धान गेहूं नहीं होता, सब्जी कहाँ ले हुई?
0: सब्जी के लिए तो कम पानी की जरूरत पड़ती,
1: तो पानी कहाँ ले आइए खेत? शहर में सब्जी ना ना हो खे।
0: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है?
1: हाँ है।
0: आपके यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो खुलता है डेली?
1: हाँ डेली खुलता है सर।
0: इलाज होता है?
1: हाँ इलाज होता है।
0: दवा मिलती है?
1: हाँ।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं है।
0: आपके यहाँ कोई सरकारी स्कूल
1: है?
0: है। हाँ। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है?
1: पाँच तक।
0: पाँच तक पढ़ाई होती है?
1: हाँ।
0: आपके यहाँ के स्कूल में बाउंड्री है?
1: देखिए वो बाउंड्री हटा हो गया है।
0: कोई दिक्कत नहीं है?
1: रास्ता नहीं है उसे,
0: आने जाने का रास्ता नहीं है?
1: रास्ता नहीं
0: है। बच्चे जाते कैसे हैं?
1: टोपरे में किसी के जाते हैं,
0: अगर पानी भर गया तो
1: उसी टोपरे में जाएगा,
0: आर पकड़ कर जाएंगे।
1: हाँ रास्ता नहीं है।
0: एक से पाँच तक पढ़ाई होती है आपके यहाँ के स्कूल में? पाँचवीं तक पढ़ाई होती है।
1: हाँ।
0: उसके बाद आप लोग अपने बच्चों को आगे पढ़ाई करने के लिए कहाँ ले जाते हैं?
1: चोरबड्डी।
0: चोरबड्डी जाना पड़ता है?
1: माइटी।
0: कितनी दूरी पर है?
1: 2 किलोमीटर, चोर 3 किलोमीटर।
0: विश्रामपुर गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं, एक और व्यक्ति है, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाम अपना बता दीजिए।
2: लक्षण प्रसवा।
0: गांव का नाम?
2: विश्रामपुर।
0: पंचायत?
2: मोहम्मद।
0: आप अपने गांव के गली के बारे में बताइए, सभी गली बन चुकी है या कुछ बनानी अभी बाकी है?
2: ना सर, सब बन गई।
0: सब बन चुकी है लगभग? जब गली बन चुकी है लगभग सभी, तो आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं?
2: परेशानी, पानी शानी ज्यादा हुई तो बहुत नली में, रोड
0: गली में भी पानी आ जाता है, तब परेशानी होती है, ऐसे नहीं परेशानी? नाली बनाई गई है आपके यहाँ की गलियों में?
2: जी
0: बनी है नाली। सभी गलियों में बन चुकी है? बनी हुई नाली से घर का पानी निकल जाता है या गली में जमा रहता है?
2: जमा रह,
0: बाहर नहीं निकल पाता है?
2: निकल तो बाप बाहर जमा रह,
0: जमा रहता है।
2: जाके देखो तो
0: बिजली रहती है कि नहीं?
2: रहेला सर,
0: बिजली रहती है, कोई दिक्कत नहीं है?
2: ना।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी सप्लाई हो रहा है आपके यहाँ?
2: सप्लाई होकेला तो उन्हीं रह जाला, एने ना हमने देना,
0: आपके घर तक नहीं पहुँचता है?
2: जी ना।
0: कितनी बार पानी सप्लाई होता है, कितनी बार पानी देता है?
2: दो टाइम देता है।
0: पानी पीने के काम में लोग लेते हैं?
2: हाँ,
0: पीते हैं, बढ़िया पानी आता है।
2: हाँ, जेकर घर जाला उपयोग नहीं कर ला।
0: आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल है जो सामने है, एक से पाँच तक पढ़ाई होती है?
2: जी।
0: उसके बाद आप लोग अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं पढ़ाने? हाँ, के लिए
2: चोरबड्डी।
0: चोर जाना पड़ता?
2: हाँ।
0: है आपके पंचायत में मोहम्मदपुर में स्कूल है आगे?
2: हाँ जी।
0: प्लस टू स्कूल है, उसमें नहीं भेजते हैं आप लोग?
2: वहाँ
0: भी जाते हैं, बगल में सिकुही गाँव है, यहाँ जाता है कि नहीं?
2: यहाँ
0: जाता है। खेती करते हैं?
2: जी
0: खेती करते हैं। कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
2: धान गेहूँ।
0: धान गेहूँ। पटवन कैसे करते
2: ना? पटवन नीचे सर,
0: मतलब कैसे? नहर बगल से गुजर रही है, उसका पानी नहीं आता
2: ना,
0: है
2: ना, उन्हें खान बनने की आवाज,
0: बारिश के पानी पर डिपेंड है? अगर बारिश नहीं हुई तो
2: पड़ती
0: रह जाता है। दोस्तों, अभी आप शिवसागर प्रखंड के विश्रामपुर गाँव के लोगों से की गई बातचीत सुन रहे थे। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। गीत के बाद हम फिर आपको शिवसागर प्रखंड के विश्रामपुर गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत सुनवाएंगे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीतकार हैं रानी मलिक और संगीतकार अनु मलिक। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का गीत, आवाज़ें थीं कुमार सानू और अलका याग्निक की। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं शिवसागर प्रखंड के विश्रामपुर गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत। विश्रामपुर गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं। ये गांव कैमूर पहाड़ी के बगल में बसा हुआ है और शिवसागर प्रखंड में पड़ता है, मोहम्मदपुर पंचायत में पड़ता है। एक और व्यक्ति हैं, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए।
1: नाम हमारा चनर्धन परसवान पड़ेगा।
0: गाँव का नाम?
1: विश्रामपुर।
0: पंचायत?
1: मोहम्मदपुर पंचायत है।
0: मोहम्मदपुर पंचायत में पड़ता है ये गाँव विश्रामपुर। आप अपने गांव की गली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी गली बन चुकी है या कुछ बनानी अभी बाकी है, चाहे पतली गली हो या चौड़ी गली हो?
1: गली तो पहले से बन गया है, वो बहुत खाल में हो गया है।
0: लगभग सब गली बन चुकी है,
1: वो खाल में हो गया।
0: आपके यहाँ की लगभग सभी गली बन चुकी है, तो बनी हुई गली में परेशानी होती है कि नहीं?
1: होती है ना।
0: क्या परेशानी?
1: वो खाल हो गया है, उस पर पानी चढ़ जाता है,
0: बारिश का पानी लग जाता है।
1: बारिश के नालियों का पानी बह रहा है, गांव घर का भी
0: नाली का भी पानी लग जाता है।
1: लग जाता है,
0: आने जाने में परेशानी होता है।
1: नाली
0: बनेगी है सभी गलियों में?
1: नाली तो सगरी बन गया है, बाकी वो बहुत खाल में हो गया है, नाली से ऊपर भी पानी चढ़ रहा है रोड पे।
0: आपके गांव के लगभग सभी गलियों में नाली बन चुकी है, तो बनी हुई नाली से घर का पानी निकल जाता है या गली में जमा रहता है या घर में जमा रहता है?
1: गली में जमा रहता है,
0: बाहर नहीं निकल पाता है।
1: नहीं,
0: आने जाने में परेशानी होती है।
1: गांव के लोग की
0: परेशानी होती है। बिजली रहती है कि नहीं?
1: रहती है।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: नहीं,
0: वोल्टेज ठीक रहता है।
1: हाँ, ठीक रहता है।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोग को मिल रहा है?
1: नहीं मिल रहा है।
0: आपके घर में नल लगाई गई है?
1: नहीं लगाई गई है। नहीं, हमारे पाइप घर में पाइप नहीं गया।
0: अच्छा, नल नहीं आई है। आपके आसपास के घरों में नल लगाई गई है?
1: नहीं, हमारा यहाँ से जो रूट है, यह रूटे है, वो पास हमारा घर है, उस गली में पाइपें नहीं पसा रहा।
0: आपके गांव में चूंकि दो वार्ड है, तो दोनों वार्ड में पाइप नहीं बिछाया गया है या कुछ घरों में लगाया गया?
1: हम तो सात वार्ड में हमारा भी घर
0: पड़ता है। तो और घरों में
1: उधर तो दिखा रहा है, उधर कोई पाइप नहीं।
0: कुछ घरों में नल लगाई गई है?
1: हाँ, कुछ घर में घर लगाई है।
0: तो वहाँ पानी सप्लाई हो रहा है?
1: आता है, चलता है, तब सप्लाई होता है। दो तीन जगह पाइप फट गया है, उसमें निकल जाता है, कुछ बड़ी पहुँचता है, कुछ नहीं पहुँचता है, जितना टानेगा उतना ही न।
0: पानी की क्वालिटी क्या होती है, पीते हैं लोग?
1: हाँ, पीते हैं ना।
0: बढ़िया पानी आता है?
1: हाँ, बढ़िया पानी आता है।
0: आपके यहाँ चूंकि प्राइमरी स्कूल है, 1 से 5 तक पढ़ाई होती है, तो स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? समय पर खुलता है कि नहीं?
1: समय पर खुलता है, लेकिन अभी तब रास्ता है, इधर उधर से लड़का चल जाता है, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं है, बरसात होने पर बहुत प्रॉब्लम होता है
0: बच्चों को जाने में।
1: बच्चा गिर जाता है, रूप में गिर जाता है, फिर कर अपना घर जाता है, कपड़ा माता पिता बदलता है, फिर आता है।
0: रास्ता नहीं है स्कूल पर पहुँचने के लिए?
1: स्कूल पर जाने का रास्ता नहीं है।
0: वैसे तो कई लोग हमारे बीच खड़े हुए हैं, समय अभाव के कारण हम सभी से तो बातें नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक और व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम संजय कुमार पड़ेगा।
0: गाँव का नाम?
2: विश्रामपुर।
0: पंचायत?
2: मोहम्मदपुर।
0: मोहम्मदपुर में पड़ता है विश्रामपुर। आप गली के बारे में बताइए अपने गांव की। सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है या कुछ गली बनानी अभी बाकी है?
2: आप तो खुद देख रहे हैं, गली बना है, सब पक्का है।
0: जो गली बनी हो जर्जर स्थिति?
2: हाँ, हाँ।
0: आने जाने में परेशानी होती है?
2: बहुत,
0: नहीं
2: बहुत।
0: आपके गांव में यानी विश्रामपुर गांव में नाली बनाई गई है सभी गलियों में या कुछ बाकी रह गई है?
2: नाली बनाई गई है।
0: बनाई गई है? हाँ। पानी निकल जाता है घर का?
2: नहीं, नहीं निकलता है।
0: क्यों नहीं निकलता?
2: रोड पर सब निकलता है, क्योंकि जो नली के पानी जो है सब भरा हो गया है, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब भरा होकर के वहाँ पे कोई गाय बांधा है, कोई बछड़ू बांधा है, सब बांध को वहाँ सब रखा हुआ है,
0: बंद हो चुके हैं। रोड पर जमा होता है?
2: हाँ, रोड पर पानी जमा होता है।
0: आने जाने परेशानी होती है?
2: बहुत होती है।
0: बिजली रहती है कि?

0: नहीं,
1: बिजली रहती है लाइन, जब बारिश होता है ना तो कभी कभी दिन दिन भर लाइन, रात रात भर बिजली गायब हो जाती है,
0: बनने में देर होता है। बिजली बिल के बारे में बताइए।
1: बिजली बिल यहाँ 125 यूनिट फ्री है,
0: उसका लाभ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
1: और आदमी जो देखिए जो स्मार्ट मीटर है उन लोग का लाभ नहीं मिल रहा है, जो हम लोग का चालू रहती है हम लोग का मिल रहा है, जिसका स्मार्ट मीटर है उसका भी रिचार्ज करवाना पड़ रहा है आजकल।
0: उसको 125 यूनिट के बाद ना रिचार्ज कराना पड़ेगा?
1: नहीं, वो भी कह रहा है कि आपका जो मीटर था लगा है उसका चार्ज कट रहा है।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए मिल रहा है?
1: नहीं,
0: नहीं मिल रहा है। नल लगाई गई है?
1: नल लगाई गई है
0: दोनों वार्ड में।
1: दोनों वार्ड में नल लगाई है, वहाँ से जो दो वार्ड है हमारे में, 7-8 वार्ड में के पानी, वो मोटर खराब हो गया है, वहाँ से कोई स्टार्टर जो भी है, आधा गांव भी पानी नहीं आता इधर। हम लोग की तरफ आज तक जब तक ये लगा है तब तक यहाँ तक पानी हम लोग को मिला ही नहीं, कभी
0: नहीं,
1: नहीं कभी नहीं।
0: आपके गांव के कुछ घरों में पानी सप्लाई हो रहा है?
1: हाँ, कुछ घर
0: अभी
1: में
0: भी हो रहा है।
1: जहाँ पे वहाँ बैठाया गया है कुछ उसी देर में 100 मीटर के क्षेत्र में बस।
0: कितनी बार सप्लाई करते हैं लोग?
1: सुबह शाम।
0: सुबह शाम पानी की क्वालिटी
1: अच्छा है?
0: अच्छा है, पीते हैं लोग?
1: अच्छा।
0: आपके यहाँ पुराना कुआं भी होगा, चापाकल भी होगी, उससे काम चलता है?
1: नहीं, वो सब सूख गया है।
0: तब पानी आता कहाँ से है?
1: ऐसे ही आदमी जिसके घर में समरसेबुल है उससे मांग के आदमी गुजारा कर रहा है अपना।
0: समरसेबुल कामयाब है। आपके यहाँ कौन सी विद्यालय है?
1: प्राथमिक विद्यालय है।
0: कितने क्लास तक पढ़ाई होती?
1: 5
0: तक। उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं?
1: उसके बाद आदमी बड्डी जाता है, छोड़ जाता है।
0: आपके यहाँ जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: यहाँ पे देखिए जो प्राथमिक विद्यालय है आज तक इसका रोड नहीं, निकासी नहीं मिला है। आदमी बच्चा जब छोटा छोटा बच्चा है, बारिश हो जाता है जब धान रोपा जाता है।
0: खेती करते हैं आप लोग? कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
1: गेहूं, धान।
0: सब्जी की खेती?
1: सब्जी खेती होता है, हम लोग नहीं करते हैं।
0: पटवन का मुख्य साधन क्या है?
1: पटवन के मुख्य साधन बारिश, बारिश पर हम लोग निर्भर हैं।
0: बारिश पर निर्भर है। बगल से नहर गुजर रही है?
1: नहर के देखिए बताते हैं, आज तक माइनर नहीं खनाया।
0: अच्छा, माइनर नहीं बने?
1: नहीं, नहीं, हाँ माइनर नहीं खनाया, मगर माइनर का पैसा सब लोग को मिल गया, मगर आज तक माइनर नहीं खनाया।
0: आपका गाँव यानी विश्रामपुर पहाड़ के बगल में, बहुत करीब पहाड़ है, जाते भी होंगे लोग पहाड़ पर आप लोग, तो उस पहाड़ से आप लोगों को लाभ होता है या हानि होती है, कुछ ऐसा नहीं है?
1: पहाड़ से कोई लाभ नहीं, कोई क्षति नहीं पहुंचता हम लोग को।
0: लाभ की बात करें तो?
1: लाभ तो बहुत कुछ है, जाते हैं एंजॉय उन्जॉय करने के लिए।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के विश्रामपुर गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आशा है सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिलता रहेगा। दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। तो साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज का ये अंक कैसा लगा, आप पत्र द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। आप अपनी राय मेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashwanisasaram@gmail.com। akashvanisasaram@gmail.com। इसी के साथ आप अपने रेडियो दोस्त मुमताज को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। स्वर एवं संकलन मुमताज अहमद और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शारदा सिन्हा की आवाज़ से। एल्बम का नाम परदेशिया बलमुआ।

विनय विराट की आवाज़ में निकेश मिश्रा की रचना थी, धुन बनाई थी सुमित द्विवेदी पवन ने। एल्बम का नाम था पल पल तोरे ही याद सतावेला। अगला गाना किरण पांडे की आवाज़ में। एल्बम का नाम मनवा उड़त उड़ उड़ भागेला। तारकेश्वर सिन्हा राही की रचना है, धुन बनाई है संजय पांडे ने।

रसधार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम गीत एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तुथे कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपकी आशा, इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

मेहरबानी तुम इनसे खड़े, तुम इनसे।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजें। लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ गाना, लेस्ली लेविस और हरिहरन का संगीत एल्बम आत्मा।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल, शब्दकार साहिर होशियारपुरी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। अलीशाज लव नोट्स इस एल्बम का गाना अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है संदीप चौटा का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: चांदनी इस एल्बम का गाना वनिता सिंह की आवाज, देव कोहली के बोल, संगीत उत्तम सिंह का।

इत्तफाकन प्यार, ये एल्बम का नाम है। हैरी आनंद की आवाज, श्याम बलकर का लिखा हुआ गाना, संगीत हैरी आनंद का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश तलत अजीज की आवाज, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत समीर का, एल्बम खूबसूरत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलरमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाके बंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुस जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स

0: सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने। पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खां के बोल।

देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने। पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खां के बोल।

से लो मैं चमन को चला वीरन से, क्षमा है कब से जुदा परवन से, अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से।

जाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: संगीतकार मदन मोहन के संगीत पर तकिए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज की यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह है कजांची फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में देख कबीरा रोया इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।

लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम हीर रांझा। और अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म इस फिल्म का गाना, एक बार फिर आवाज लता मंगेशकर की, बोल कैफी आजमी के।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सहे लुधियानवी के बोल हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदालत फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो इबारत हमने पोस्ट की है वो सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि संगीत की अनेक विधाएं होती है। संगीत गजल के रूप में भी है और कव्वाली के रूप में भी। कई गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं। जब पसंद की बात हो तो सबके अपने ख्याल हैं। संगीत की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि उसके बिना दिल नहीं लगता। संगीत के प्रति दिल में ऐसे अरमान, ऐसी दीवानगी कि सारी सारी रात उनकी याद सताती है। जब संगीत की शैली मधुर हो और कोमल हो, संयोजन सरल हो और भारतीय वाद्य यंत्रों का विशिष्ट प्रयोग हो तो गीत भावपूर्ण रूप में निकलता है। संगीत की कहां कोई सीमाएं होती है, पर खासियत इस बात में है कि उनकी मौलिकता और मधुरता बनी रहे। संगीत के दीवानों की निगाहों को न कारवां की तलाश होती है, ना वे उस बरसात की रात को जिंदगी भर भूल पाते हैं जब उन्होंने गरज कर सावन आते देखा। पसंदीदा संगीत कानों में पड़ते ही ख्याल आता है, जो बात तुझ में है किसी और में नहीं। बताइए कौन से हैं आज के गीत। ये आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने इबारत पोस्ट की, आप लोगों ने इसे पढ़ा और बहुत सारी बातें आपने लिख करके भेजी संगीत के बारे में। जी हाँ, आज दो महान संगीतकारों की याद का दिन है, संगीतकार मदन मोहन और संगीतकार रोशन। मदन मोहन के गीत तो हमने आपको यादों की महफिल इस कार्यक्रम में सुनवाए हैं। आज इस कार्यक्रम में यानी सुरीला सफर कार्यक्रम में संगीतकार रोशन के संगीत को हम याद करेंगे। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों के झरोखों से जीवंत हो उठती है। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, यह तो आत्मा की वो बेबाक आवाज है जो हर दीवाने के दिल को सीधे छूकर हौले से कह जाती है कि जो बात इस सुरमई एहसास में है वो कायनात की किसी और चीज में नहीं। एक साथी की बात है कि कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से बेहतर शायद ही कोई और विकल्प हो। संगीत सिर्फ सात सुरों में बंधा नहीं होता। संगीत में दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य होती है। किसी के लिए संगीत का मतलब स्वयं को सुकून देना होता है और कोई अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति संगीत द्वारा करता है। प्रेमियों के लिए तो संगीत प्रेम की भाषा के व्याकरण जैसा है। अच्छा संगीत बेचैनी कम करता है। घंटों काम कर रहे व्यक्ति का कुछ देर अच्छा संगीत सुनना उसकी रचनात्मक कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। बहुत सारी बातें हैं संगीत के बारे में कहने के लिए। आप रोशन के संगीत के बारे में भी हमें लिख सकते हैं। चलिए पहला गाना सुनते हैं कार्यक्रम का, वल्लाह क्या बात है, इस फिल्म का गाना। जी हाँ, कुछ संगीतकार या बल्कि संगीत के बारे में ही हम कह सकते हैं, जब अच्छा संगीत हम सुनते हैं तो मन से यही बात तो निकलती है।

वल्लाह क्या बात है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ ये गाना है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

शम्मी कपूर और बीना रॉय पर फिल्माया गया यह गाना, क्या बात है। आप चाहे कितने ही परेशान हो, काम का कितना भी बोझ हो, या किसी और बात का मन में कोई उदासी हो, कोई टेंशन हो, कुछ इस तरह के गाने जब हम सुन लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से परेशान थे। यही तो संगीत का जादू होता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि सुरों की अनमोल साधना, लाइव ऑर्केस्ट्रा का वो सुनहरा दौर, आज जहां कंप्यूटर से संगीत बनता है वहीं पुराने दौर का फिल्मी संगीत एक अद्भुत साधना था। 1950 से 80 के दशक में एक एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में 60 से 150 असली वाद्य यंत्र, वादक और गायक एक साथ लाइव बैठते थे। वहां कोई रीटेक या एडिटिंग की गुंजाइश नहीं होती थी। अगर आखिर सेकेंड पर भी एक वायलिन गलत बजा तो पूरा गाना शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता था। जब इतने सारे ओरिजिनल वाद्य एक साथ गूंजते थे तो संगीत में एक जीवंत इंसानी रूह समा जाती थी। यही कारण है कि विविध भारती पर बजने वाले ये सदाबहार तराने आज भी सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। एक साथी की यह बात है कि

गीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों में समा जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आरती फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और ये गाना प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं संगीत के बारे में कि कोई ऐसी आप कोई घटना अगर आपको याद आ रही हो जब आप बहुत परेशान थे और आपको लग रहा था कि ये समय ये परिस्थितियां कैसे कटेंगी कैसे बदलेंगी क्या किया जाएगा, लेकिन कोई गुनगुना रहा था एक मधुर संगीत या रेडियो पर कोई ऐसा मधुर गीत बज रहा था और आप भूल गए कि आपको क्या करना है या किस वजह से आप परेशान हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आपको याद आती है तो वो आप हमें बता सकते हैं, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब अनायास ही आपके मुंह से एक अच्छा सा कोई गीत आप गुनगुनाने लगते हैं या उस गीत के शब्द आपके मुंह से निकल पड़ते हैं, इस बात का जिक्र आप हमसे कर सकते हैं।

संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी गजल में अपना अक्स मिल जाता है, कभी किसी धुन में बचपन, और कभी कोई पुराना गीत बरसों पुरानी याद को फिर से मुस्कुरा देता है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिख दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के लिए माँ की लोरी और देवी देवताओं के लिए भजन और शादी विवाह जैसे अवसर पर संगीत संध्या में हम गीत संगीत के माध्यम से इन अवसर को और भी रंगीन बनाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत कला का विशुद्धतय रूप है, इसलिए वह सौंदर्य को सबसे उच्चतम रूप में प्रकट करता है। सावन के भीगे दिन हो या गर्मी की जलती दोपहर, एक संगीत ही है जो दिल को नरम नरम एहसास करा के जीवन में रस घोल देता है। जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब होने लगती है, जिंदगी संगीत में अपना सुकून खोज लेती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी गीत सुनना सबसे सुखद और सबसे मनोरम लगता है। सांसों की लय और धड़कन की ताल पर जब तक जिंदगी तराना सुनाती रहेगी, गीतों के सुर मन के तार छेड़ते रहेंगे, जब तक ये पूरी कायनात सुरीली बनी रहेगी। धन्यवाद आपका। चलिए, चित्रलेखा फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

क्या कहना, ऐसे गीत जब हम सुनते हैं तो उलझा हुआ मन भी सुलझ जाता है अनायासी। इसका हमें आभास भी नहीं होता और ऐसा हो जाता है। एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे पुराने गाने इतने मधुर लगते हैं और संगीत इतना मीठा कि पूछो मत। मैं ऐसी खो जाती हूँ कि आगे पीछे की मुझे कोई खबर ही नहीं रहती। हाँ, संगीत के प्रति दीवानगी तो होती है, लेकिन ऐसी भी दीवानगी नहीं कि कुछ खबर ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक साथी हमारी लिख रही है कि उम्र छोटी थी, शादी करके दूर चली आई, सारा भरा पूरा संयुक्त परिवार साथ

रहता था, पर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। उस पर मेरा जन्मदिन पड़ा और मुझे किसी ने भी विश नहीं किया। मैं तो बहुत दुखी हुई और चुपचाप रोती रही। उस समय तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा गम मिला है मुझे, लेकिन रेडियो पर गाना बज रहा था, समझौता गमों से कर लो, और तब मन को चैन आया। एक साथी की ये बात कि जब भी परेशानी होती तो भगवान के मंदिर में जो भजन गा रहे होते हैं या भजन बज रहे होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। वहीं रुककर हमारा भी भजन गाने का मन बहुत करता है। और एक साथी लिखते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हर क्षण व्याप्त है, यहाँ तक कि हम रोते भी हैं तो सुरों में रोते हैं और गम हमसे दूर भाग जाता है। एक साथी की ये बात की है कि हमारी कॉलोनी में एक बांसुरी वाले भैया बांसुरी बेचने निकलते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर हम तो अपना काम वाम छोड़कर बस सुनने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले जाते। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बचपन में माँ लोरी सुनाती है, स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, कविताएं ऊंचे स्वर में गाकर आनंद लेते हैं, जवानी में हम प्यार भरे गीत सुनते हैं, रेडियो के साथ गाते हैं, फिर रियाज न होने के कारण आवाज में संगीत नहीं रहता। मराठी में इसे कंठ फूटने कहते हैं, मतलब आवाज में वो सुर वो लय तान नहीं होती, फिर भी हम मन ही मन कुछ गाकर अपना दिल बहलाते हैं, बुढ़ापे में भी कुछ यादगार गीत गाते हैं, भजन करते हैं। इस तरह संगीत हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। और अब बावरे नैन इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। गीता दत्त और मुकेश की आवाजें हैं इसमें, और संगीत आपको पता ही है रोशन का, राज कपूर और विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया ये गाना है। लिखा किसने है ये आप हमें बताइए।

बावरे नैन फिल्म का ये गीत आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गाना। एक साथी ने लिखा है कि मंजू जी, घर में तो प्राय ऐसा होता ही रहता है कि कभी किसी बात पर किसी से बहस छिड़ गई या छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई यूं ही किसी छोटी सी बात पर हो जाता है, तो फिर उस स्थान से हटकर दूसरे कमरे में जाकर शांति से बैठकर गीत सुनने लगते हैं। रेडियो पर विविध भारती तो नित्य प्रतिदिन बजता ही रहता है, चाहे वो बजने वाला गीत कैसे भी मूड का हो, पर अपने बिगड़े हुए मूड को बदल ही देता। यही तो होता है संगीत का जादू। एक साथी की ये बात है कि संगीत मन की दवा है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं को संतुलित करने और मन को शांति देने का माध्यम भी है। जब मन उदास होता है, जब मधुर संगीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है और तनाव को कम कर देता है, संगीत भाषा और सीमाओं से परे जाकर सीधे हृदय से संवाद करता है। भजन, गजल, लोकगीत या शास्त्रीय संगीत, हर स्वर में मन को सुकून देने की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा और मन की सबसे प्रभावी दवा कहा जाता है। एक साथी ये बात लिखते हैं कि मानव ने रचाया संगीत तो ठीक है, पर कभी सोचा है कुदरत के संगीत के बारे में? भंवरों के पंख का गुंजन, हवा से लहराते पत्तों का गुंजन, अरे सागर की गहरों का संगीत, लहरों का संगीत, वो भी तो याद कीजिए। एक साथी की ये बात कि कई बार संगीत मन को असीम सुकून दे जाता है। मेरे पापा जो आज डिमेंशिया से ग्रस्त है, उन्हें पुराने हिंदी गीत बेहद पसंद है। जब भी वे रेडियो या टीवी पर ये गीत सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अनोखी खुशी आ जाती है। उनका सबसे पसंदीदा गाना है जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए, ये बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि मंजू जी, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही विविध भारती पर संगीत सुनते हुए गुजार दिया है। कॉलेज के समय रेडियो पर और नौकरी में कंप्यूटर और रिटायरमेंट के बाद भी वापस रेडियो पर कुछ भी हो, संगीत जीवन की एक ऐसी धारा है जिसको मैं छोड़कर नहीं रह सकता। एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बात उन दिनों की है जब मेरी स्वर्गीय माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर पर थी। मैं उनके पास बैठा रहता था जब विविध भारती को सुना करते थे। उन पर चलने वाला मधुर संगीत जो माँ की पहली पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके चेहरे का वह सुकून देखकर मैं भी कुछ राहत महसूस करता था। सच, संगीत बीमार व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। चलिए इस मुस्कान को थोड़ा और हम बड़ा करते हैं। मल्हार फिल्म का गाना बड़े अरमानों से, ये गाना लता जी और मुकेश जी की आवाजें हैं इसमें। रोशन का संगीत है ये तो आपको पता ही है, और गीतकार कौन है ये आपको बताना है।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदें भी एक ताल में बरसती है, जिससे एक अनोखा संगीत पैदा होता है जो प्रकृति हमारे लिए लेकर आती है। ये संगीत हमारे मन के साथ साथ धरती की प्यास भी बुझाता है। इसके प्रभाव से धरती झूमते गाते हुए अपना श्रृंगार करते हुए हरी भरी हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में बड़ा सा रेडियो लगता था, उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चल रही थी। तब हम वहां सुनने जाया करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना न मिले चलेगा पर गीत जरूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया। उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था, तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने यह बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट कर चुका था, सगाई और शादी से पहले की बात है। मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं, कंफ्यूज था। उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है।

गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट ला के दी, तो मैं साथ ले आई और बहुत सुनती थी और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ताजमहल फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी के बोल।

संगीत एक अंतहीन समंदर है जो कभी लोकगीतों की मिट्टी की खुशबू में महकता है तो कभी सूफी कलामों की रूहानी तान में गूंजता है। हर दिल की धड़कन का अपना एक सुर होता है और यही वजह है कि उदास शामों से लेकर जश्न की रातों तक संगीत हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। धुनों का ये जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसानी जज्बात दीवानगी की हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जब किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार गुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हो तो वो संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक

अधूरी बंदिश, वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं ना कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत हौसला बनता है, और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आपने लिखी है। और चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना नौबहार, इस फिल्म से लता जी की आवाज़।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं बरसात की रात।

ये सुनते हुए हमारे एक साथी ने थोड़ा जोर देकर इस बात को कहा है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके। आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं। हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूं, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज।

एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बताना चाहूंगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोजाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, दिल ही तो है इस फिल्म का गाना।

दिल ही तो है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज़ है। सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का। आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख करके भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने उन आवेदकों की समस्याएं सुनी जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में मिले समाधान से संतुष्ट नहीं थे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार

0: चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार तथा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल समेत अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन हर महीने के दूसरे मंगलवार को किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। उपचुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस चुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की ओर से रेखा गुप्ता, जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर और जन शक्ति जनता दल की वीणा मानवी शामिल है। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसके तहत लालू प्रसाद को जमानत मिली थी। न्यायालय ने राजद अध्यक्ष की लंबित आपराधिक अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय को 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने को कहा है। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी का है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी कर दिए हैं। एजेंसी ने बताया कि उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉग इन करके अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने चिन्हित उत्तरों की तुलना स्कैनर द्वारा पढ़े गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। एजेंसी ने कहा है कि चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 141.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज किशनगंज, अररिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन किया है। मौके से 3 अपराधियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। खगड़िया पुलिस ने ₹25,000 के इनामी अपराधी सतीश यादव को गोगड़ी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। भागलपुर जिले के जमालतीपुर गांव स्थित विश्वकर्मा चौक के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इधर सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र स्थित बजरंग चौक के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

रियासत में आम लोगों की शिकायतों के फौरी सद्देबाब के लिए आज पटना में रियासती सतही सहयोग शिविर की शुरुआत की गई है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट अहाता वाक़े संवाद भवन में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने उन दरख्वास्त गुजारों के मसाइल सुने जो ज़िला सतह पर मुनक़िद सहयोग प्रोग्राम में दिए गए हल से मुतमईन नहीं थे। साथ ही उन्होंने अफसरान को मसाइल के फौरी हल के अहकाम दिए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, देही तरक्यात के वज़ीर शरवन कुमार और महसूलत व असलाहत एराजी के वज़ीर दिलीप कुमार जायसवाल समेत दिगर कई सीनियर अफसरान मौजूद रहे। रियासती सतही सहयोग शिविर का इनेकाद हर महीने के दूसरे

रही है। जिमनी इंतखाब के लिए इलेक्टोरल अफसर व इसलाहत एराजी के डिप्टी कलेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस इंतखाब के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। अहम उम्मीदवारों में एनडीए की जानिब से बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी की जानिब से रेखा गुप्ता, जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर और जनशक्ति जनता दल की वीना मानवी शामिल हैं। उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना पर्चा नामजदगी वापस ले सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 30 जुलाई को होगी, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घपला के एक मामले में आरजेडी सदर लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस हुक्म में भी मदाखलत करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत लालू प्रसाद को जमानत मिली थी। अदालत ने आरजेडी सरबराह की जेर इल्तवा मुजरमाना अपील पर झारखंड हाईकोर्ट को 6 महीने के अंदर समाअत मुकम्मल करने को कहा है। ये मामला देवघर ट्रेजरी से गैरकानूनी निकासी का है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तहान की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए जवाब जारी कर दिए हैं। एजेंसी ने बताया कि उम्मीदवार एनटीए के वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने दरखास्त नंबर से लॉगिन करके अपनी ओएमआर शीट और जवाब देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने निशानजद जवाब का मवाजना स्कैनर के जरिए पढ़े गए जवाब से कर सकते हैं। अगर कोई जवाब मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार सवालों का इंतखाब करके अपने मुंतखब मुतबादिल पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 की फीस की अदायगी करके चैलेंज दे सकते हैं। एजेंसी ने वाजे किया है कि चैलेंज सही पाए जाने पर फीस वापस कर दी जाएगी। ओएमआर चैलेंज की सहूलत इस महीने की 15 तारीख तक दस्तयाब रहेगी। मानसून की फालियत से रियासत में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाल मगरबी हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक मगरबी चंपारण ज़िले के चनपटिया में सबसे ज़्यादा 141.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आज किशनगंज, अररिया और सुपौल अजला में कुछ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। रियासत के दिगर अजला में भी बारिश का इम्कान है। भोजपुर जिला के जगदीशपुर थाना इलाके से पुलिस ने गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मौके से 3 जरायमकारों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। खगड़िया पुलिस ने ₹25,000 का इनामी जरायम पेशा सतीश यादव को गुगरी थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। वो तवील अरसे से फरार चल रहा था। भागलपुर ज़िले के जमालदीपुर गांव वाक़े विश्वकर्मा गांव के करीब बेकाबू ट्रैक्टर की जद में आने से एक नौजवान की मौत हो गई। हादसे से मुश्तैल लोगों ने सड़क जाम करके मुजाहरा किया। इधर सुपौल ज़िले के छातापुर थाना इलाका वाक़े बजरंग चौक के करीब एक ट्रक की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर POK और मैनेजमेंट ट्रेनी के 6,715 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हैं। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता है www.ibps.in।

0: रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड ए और टेक्नीशियन ग्रेड तीन के 6,565 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीई या बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 टेक्नीशियन ग्रेड तीन के लिए, अधिकतम आयु 30 और टेक्नीशियन ग्रेड एक के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.indianrailways.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के 150 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2026। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpssc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुस जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अल बहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो

0: है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं।

0: वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, रजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं जेलर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: ये है नौनिहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से मदन मोहन की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: नम्रा
1: नमस्कार।
0: कैसी हो चंचल?
1: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
0: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें यही हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
0: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
1: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते हैं, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
0: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
1: हाँ।
0: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं।
1: हाँ।
0: इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे, और वहां आप ही संपर्क नहीं है। जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
0: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
1: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है तो हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
0: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते
1: जी।
0: हैं। कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है, तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
0: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा जहाँ हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और एक कि उनका इंतजार होता है,
1: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
0: मुंह में राम, बगल में छुरी।
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा।
0: हाँ।
1: लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें और पहला गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तो मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है, लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं, और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती है जो दुनिया है, इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, जब पहले जब हमें अगर हम दूर दराज की बातें करें, अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहां पर बात किया करते
1: घंटों लंबी लाइन में लगा करते
0: है ना, लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अब ये काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है, और मिलकर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
1: बिल्कुल
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कांटेक्ट, जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के, लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल, शारीरिक रूप से हम वहां मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं।
0: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो, बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन ले।
0: चलिए।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
7: हाँ, लेकिन चंचल, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
6: अच्छा?
7: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
6: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो

0: संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए
1: हाँ
0: हैं, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
1: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं जो
0: हाँ,
1: उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
0: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, जेवो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है, जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चलन कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक जहाँ ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहाँ ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहाँ। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज, और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है
1: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट है।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
0: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो

0: वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा,
1: हाँ,
0: हम सब बैठकर बतियाते थे
1: हाँ,
0: हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है। इस पर हमें बाकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, वो ध्यान तो चला गया है, और सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था, और इस गीत में सुलक्षणा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की सह संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि

0: फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे ऐप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज ऐप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल। और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: नंदाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में, और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपने अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे, और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में, प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी, और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना, वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार

0: और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं
1: तब जाके
0: जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में। उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं, कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती
0: बिल्कुल
1: है।
0: इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो
1: वो
0: वैसी
1: भी।
0: ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहाँ भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंदेखा अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर
0: बिल्कुल।
1: सकते
0: वैसे
1: हैं।
0: तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना
1: जी
0: चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं,
1: जी
0: लेकिन हाँ, अगर आप चटोरे हैं, थोड़ा सा
1: जी
0: आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है। हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं, सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया
0: बिल्कुल,
1: हो।
0: सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना, वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ हैं कि नहीं, बनाने के तरीके साफ हैं कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है, इन दिनों में मक्खियाँ बहुत हैं, तो मक्खियाँ जब खाने पर बैठती हैं तो वहाँ अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग
0: हाँ,
1: रहा है।
0: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं,
1: हाँ
0: किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं, बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें, और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें, और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें, और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
1: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई इन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के

0: कार्यक्रम और सबसे बहुत ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
1: एक और बात कि तली हुई चीजें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताजा तेल,
0: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहर ही खाना पसंद करती है और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय ताजी और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फ़ायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है, तो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें हम घर में,
0: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
1: और बच्चे इन चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियां बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना वहां बिल्कुल जो बची कुची सब्जियां उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती है, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताजी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश वो यही कहना चाह रही थी कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद खाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाएं, और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
1: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं।
1: हाँ।
0: पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है। और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा अच्छा वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया।

0: भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: हम कॉपी में क्या
1: उदाहरण देकर
0: करते थे, उदाहरण
1: समझाइए।
0: देके समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता हैं वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे। यानी
1: हाँ
0: कि
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है?
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और
1: और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड की सितारे, इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए
1: जी जी।

0: अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था, उस दौरान 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी
0: बहुत खूबसूरत, डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया, जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था,
1: जी
0: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा
0: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले
1: अच्छा
0: कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा। नहीं ठीक है, मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में। मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था,
1: जी
0: दे लाइक इट, दे शॉर्टलिस्टेड। कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई, एंड आई ज्वाइंड द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
0: जाके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी। और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था, उनका
1: हाँ,
0: ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि
0: था।
1: हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने
0: हाँ, उनका एक
1: का,
0: अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहां पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट कर रहा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेयर एज तीन फेसेस थे हमारे यहां पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है,
1: जी
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी। वे तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया,
1: जी
0: उनके लिए सब सेम थे।
1: सबसे
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले,
1: अच्छा
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे। मतलब एक ही सीन हमारा, हमने 15-15 20-20 बार शूट किया बहुत बार,
1: जी जी
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा
1: ओ
0: है ना।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: एक
0: एंड देन
1: कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते
0: आप
1: हैं
0: क्या
1: इस रोल के
0: सोचते।
1: बारे में?
0: हाँ,
1: क्या बहुत बड़ी बात है।
0: बहुत बड़ी बात है।
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी। मैं सोचता हूं कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की,
1: जी
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है
1: हाँ
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूं
1: हाँ हाँ
0: कि
1: हाँ
0: सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ।
1: जी
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है,
1: अच्छा
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल।
1: जी
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक।
1: हाँ
0: अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं,
1: अच्छा
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक,
1: अच्छा
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा। तो वहां पे वो फील आया, मैंने बोला ये करता हूं। तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, वो लेकिन नहीं, ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना। नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन ठीक है छोड़ यार। मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए।
1: हाँ
0: मैंने बोला सर एक पॉइंट है। बोले हाँ बोलो। ना ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है। उन्होंने बोल के देखा, एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है,
1: जी जी
0: जैसे कैप्टन ऑफ द शिप।
1: बिल्कुल
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, बड़ी बड़ी बोला हाँ गुड गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द
1: बिल्कुल
0: फिल्म।
1: यस यस यस
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए। आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो ऐसी रहे।
1: हाँ,
0: आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा
0: सोच
1: है।
0: रहा है तो अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात है।
1: जी जी जी
0: तो अच्छा मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे, मैं कोई
1: हाँ,
0: इसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूं।
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी
0: बहुत
1: होता है।
0: जरूरी है।
1: हाँ
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ।
1: जी
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलता है कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि

0: महात्मा जी, लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी, और वो जाने को बोलते हैं।
1: अच्छा
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं। और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती कर तो है कि, तो उस पर मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा इमोशनल
1: अब
0: रहे।
1: तक वो
0: हाँ,
1: महात्मा बोल रहा है, मगर अब
0: अब तक
1: जो
0: प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली बोले अरे करना यार काइंड ऑफ। तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला,

0: तो मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए, थोड़ा
1: हाँ,
0: सा इमोशनल
1: अब तक
0: रहे।
1: वो महात्मा बोल रहा है,
0: हाँ,
1: मगर
0: अब तक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली बोला, अरे करना यार काइंड ऑफ। तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ही हो जाएगा वो
1: हाँ
0: थोड़ी। मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है,
1: हाँ
0: ठीक है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं, तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बापू पूरे पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राजजी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था। हाँ चलो चलो। मैंने बोला राजजी ये, हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है। बापू कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चाहिए, वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। तो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस।
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था,
1: जी
0: जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा,
0: तो विक्रम मराठी के में काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा
0: बहुत
1: नाम है
0: बड़ा नाम है, शोज
1: जी।
0: करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली फिल्म थी,
1: अच्छा अच्छा
0: तो उसने कंटिन्यू किया। उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर, और वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया।
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त थे। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना।
1: जी
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले।
1: हाँ
0: बट वो आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए। आप कुछ 4.5 घंटे का होगा, बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: कैसे
1: जी
0: कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा,
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ, और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहाँ पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता। और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं।
0: जी सर।

0: लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह
1: नहीं
0: जाती
1: रहती।
0: जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है।
1: जी
0: और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम किया
0: कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया
1: बहुत।
0: था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है। मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका
1: वही
0: है,
1: ना,
0: प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत। मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है
0: जी
1: वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो
0: पढ़वाते।
1: शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा, रंजीत सर के रीडिंग में 1.5 पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके।
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी
1: एक
0: जी
1: छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो ही विल वर्क ऑन यू।
0: जी
1: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को
0: अच्छा
1: दिया जाए।
0: अच्छा
1: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि
0: हाँ
1: एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया
1: ज्यादा
0: जाता
1: जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये
0: है।
1: छोटी छोटी चीजें हैं
0: जी
1: जो
0: जी
1: मैं उनसे सीखा,
0: जी
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं,
0: हाँ
1: परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी आप सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी जी
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है, वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग,
0: जी हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट।
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूं,
0: जी
1: दूसरी
0: जी
1: बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल
1: जो कि
0: बिल्कुल
1: टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं, मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं है।
1: नहीं आएगा, सही बोला आपने। अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस।
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूजबम्प दे जाती है
0: जी जी जी जी और उसका जो भी
1: तुरंत
0: रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त लाइव तुरंत आना है।
1: तुरंत। यू फील सो गुड
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया,
0: जी
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
0: जी
1: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है, और
0: हाँ
1: मैं एंजॉय करता हूं डेफिनेटली। और आप 15 दिन, महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे छह छह दस दस पंद्रह पंद्रह लाइनें, डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा

0: नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में। तो
1: जी
0: महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है। मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल
0: तो दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
1: जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे, तो उनके सेटआउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
0: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि
1: हाँ
0: लॉकडाउन के दौरान
1: हाँ
0: मैं जब नागपुर में था
1: जी
0: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, अमोल खंते,
1: जी
0: उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो
1: हाँ
0: भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे,
1: जी
0: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ
1: हाँ
0: मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए,
1: अच्छा
0: और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
1: अच्छा
0: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका, तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
1: अच्छा
0: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: लाइट कॉमेडी है उस
1: तो ये
0: टाइप
1: कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
0: की। हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना,
1: हाँ
0: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के
1: जी
0: साथ, लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
1: जी
0: जो
1: जी
0: शायद उच्च और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था,
1: अच्छा
0: IPC 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
1: जी
0: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है,
1: हाँ
0: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म
1: जी जी
0: है, एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
1: ओह क्या
0: या
1: बात है।
0: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
1: जी
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारेगामा या
1: अच्छा
0: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया,
1: जी
0: और
1: जी
0: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
1: चलिए
0: हालांकि
1: इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी।
1: जी आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर।
1: जी
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया,
0: अच्छा
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे। और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई,
0: अच्छा
1: छोटा सा किरदार था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही, मैं अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब,
0: अच्छा
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
0: जी
1: रुद्र में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का है, छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं, उनको
0: अच्छा
1: अच्छा लगा है और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? ही सेड नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे।
0: हाँ
1: तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे भी मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं,
0: अच्छा
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूँ, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूँ,
0: बिल्कुल
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूँ, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
0: बिल्कुल
1: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली, आई वेंट देयर, दे लाइक माई वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है।
0: हाँ
1: सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था,
0: जी जी जी
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
0: अच्छा
1: रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना, एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
0: जी जी
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक
0: जी
1: प्रोजेक्ट मेरे
0: जी
1: मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
0: क्या बात।
1: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
0: अच्छा
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी,
0: अच्छा
1: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वो वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा
0: अच्छा
1: दिखाएंगे।
0: अच्छा
1: और कैरेक्टर अच्छा था, जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं
0: हाँ
1: हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं, कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो,
0: जी।
1: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो,
0: अच्छा
1: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं,
0: हाँ
1: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा, गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन,
0: कई
1: तो
0: शेड्स हो सकते
1: कई
0: हैं।
1: शेड्स हो सकते हैं।
0: जी
1: सो जितने रस वो दिखा सकता है, उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है,
0: अच्छा
1: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी, जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
0: हाँ
1: मैंने सुना तो वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू
0: जी
1: स्टोरी थी,
0: जी जी
1: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है,
0: ओह
1: इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था। लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन

0: तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था,
1: जी
0: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। तो
1: अच्छा
0: बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट एक साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का,
1: जी
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल।
1: अच्छा
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही
1: जी जी जी
0: दैट वे।
1: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूं कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो। लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं,
1: जी
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रहा ही।
1: हाँ, मकरंद
0: वो
1: देशपांडे
0: मकरन जी
1: उसमें,
0: थे उसमें,
1: उन पर
0: हाँ
1: वो फिल्माया गया।
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ
1: हाँ
0: में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत है कि उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
1: जी जी
0: और
1: जी
0: ये गाना चल रहा है। और अभी बारिश आने ही वाली है,
1: हाँ
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन।
1: हाँ
0: और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो और फिर
1: हाँ
0: ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो।
1: क्या बात है। चलिए सुनते हैं यही गीत।
0: जी।

विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग-अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे हैं

0: थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा। तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा।
0: जी
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में,
0: अच्छा
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इंफॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
0: जी जी
1: मैं एक साइड बनाता रहूं, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए,
0: अच्छा
1: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर। हम जैसे मैंने आपको बताया IPC 324, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई,
0: जी
1: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके मुझे पकाएंगे। और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूं, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर।
0: जी
1: मैंने वागले के बाद में, अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है,
0: जी
1: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा
0: और
1: किरदार।
0: एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
1: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है
0: जी जी
1: बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
0: जी
1: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था,
0: अच्छा
1: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
0: ओहो क्या बात
1: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर किनले दुश्मन ध्यान से,
0: हाँ
1: हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
0: वाह वाह
1: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
0: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
1: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना
0: यही
1: ही
0: गाना सुन
1: बहुत
0: लेते
1: एप्ट
0: हैं।
1: होगा कि
0: बिल्कुल
1: हम
0: बिल्कुल
1: जब जी जान से खेलते हैं,
0: जी
1: जी जान से लड़ते हैं,
0: जी
1: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू,
0: वो भी, दुर्भावनाएं जो होती हैं
1: दुर्भावना
0: वो
1: है,
0: भी हमारी दुश्मन है।
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है,
0: जी
1: आपकी
0: जी
1: फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा, जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे
0: जी
1: आर देयर टू हेल्प मी।
0: जी
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीज़ों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: क्या
1: विपुल
0: बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है,
1: जी
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना
0: जी
1: चाहिए।
0: जी
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है, ये
0: हाँ,
1: किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ,
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो, कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा। और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है।
0: जी,
1: सो
0: हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ,
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSD, FTI, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं।
0: जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी।
0: हाँ,
1: और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ
0: जी

0: मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूं
1: जी।
0: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है। मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है
1: हाँ
0: जो कि दूर से देख के ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
1: वाह
0: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन मतलब
1: जी।
0: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
1: जी
0: कि
1: जी
0: आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
1: सीखने की जो ये प्रक्रिया है इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है,
0: जी
1: तो हम इस पर बात करेंगे, मगर यहां इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
0: जब संघर्ष की बात आई है तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
1: हाँ
0: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे। ये
1: हाँ
0: मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता
1: क्या
0: है।
1: बात है,
0: जी
1: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है।
1: जी
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग, सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है,
0: जी
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युडाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अभी यहां पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहां से, कम से कम राह के पत्थर तो

0: तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में हाँ। उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था।
1: अच्छा।
0: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था, कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
1: जी।
0: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 male 3 females, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बतौर कलाकार।
1: वाह वाह।
0: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल, उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी,
1: जी
0: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था, बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए। और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जिनके पास समय है
1: जी,
0: जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो
1: जी, जी, जी।
0: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे।
1: क्या बात।
0: तो ये मेरा सबसे जरूरी है, अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं?
1: अच्छा।
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं?
1: ओह क्या बात।
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो।
1: अच्छा।
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है, पॉजिटिव बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये 2-3 साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी।
1: अच्छा।
0: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है।
1: जी, जी।
0: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
1: निश्चित रूप से। और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहां हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी,
0: कि लोग यहां पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
1: हाँ।
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो।
1: हाँ।
0: और सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी,
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ।
0: तो
1: आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल,
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं
0: है। महत्व नहीं है। तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ, हाँ।
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल
1: जी,
0: उसके बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा। शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ।
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम,
0: लगे कि विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी।
0: तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो,
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।

0: क्या बात है, क्या बात है,
1: बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
0: क्या बात, क्या बात।
1: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो
0: वाह,
1: संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
0: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत
1: बहुत
0: गाना है।
1: खूबसूरत गाना
0: आइए
1: है
0: सुनते हैं।
1: जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी हैं, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा। यहाँ पे
0: हाँ
1: कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है,
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग।

भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बांग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय दो जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्यीय चालक दल में 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबैया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई और एक घायल है। एमटी मोम्बासा में सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये विश्वभर के लोगों की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पहले अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले रखे, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावों को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने का साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और

0: ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब तक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर वर्ष इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विद्यार्थी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में मूसलाधार बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 12 अन्य लोग घायल हैं। ये घटना कल रात कोहाट जिले के बाहरी इलाके में स्थित मालिंगिन गांव में हुई। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन आप हर रोज की तरह आज भी सुनेंगे 5:10 पर, और 5:30 पर हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुनेंगे युवा वाणी।

शाम 6 बजे और रात्रि 9 बजे आप हमारे केंद्र से लोकगीत सुनते हैं। 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। इसे हम रिले करते हैं।

6:10 पर हमारे किसान भाइयों का प्रसारण होगा किसान वाणी। आज के इस कार्यक्रम में किसान मुनेश्वर सिंह जानकारी देंगे टमाटर की खेती के संबंध में, अलावा इसके पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपनी और मेढ़ों को काटे नहीं बल्कि मजबूत करें, इन बिंदुओं की भी चर्चा की जाएगी।

कर 40 मिनट पर और सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम सुनिएगा गुड इवनिंग रोहतास 7:15 पर।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आप सुनते हैं क्रमशः 7:30 और 7:45 पर। 7:50 पर हम आपके लिए पेश करेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या आप सुनते हैं।

7:45 पर, 7:50 पर हम आपके लिए पेश करेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या आप सुनते हैं रात्रि 8:45 पर और 9:15 पर। गजलों की महफिल सजेगी, सुनना नहीं भूलिएगा। विविध भारती मुंबई के प्रसारणों में शामिल होइएगा 9:30 पर, सुनिएगा आज के फनकार। और रात्रि 10 बजे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम सुनिएगा रस रंग। चित्रपट तराने के अंतर्गत सदाबहार फिल्मी नगमे हम आपके लिए पेश करेंगे रात्रि 10:30 पर। सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर दिल्ली से प्रसारित समाचारों के बाद। तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। वंदन के तहत लीजिए सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में अभी आप रामायण जी की आरती सुन रहे थे। आइए सुनते हैं एक भक्ति रचना भरत कुमार के स्वर में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं मोहित गुप्ता इस भक्ति रचना से।

मोहित गुप्ता की गई इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत भी। जी हाँ श्रोताओं, एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि मौसम की बेरुखी हो रही है, क्योंकि आजकल के दिनों में तो रिमझिम फुहारों की तलब होती है। खेतों से लेकर बागीचों तक, घर से लेकर आंगन तक, अंदर से लेकर बाहर तक, जी हाँ, जो तलब होती है, जो इच्छा होती है, वो यही होती है कि रिमझिम फुहारें आती रहें और धरती तृप्त रहे। लेकिन वो कुछ दूसरे ढंग का रहा है। जी हाँ, गर्मी है घर में, तो भाई गर्मी है, गर्म मौसम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, तब है कि मौसम पर जोर भला किसका चला है, वो तो कुदरत ही है जो कि तय करती है कि कैसा मौसम कब होना चाहिए। चलिए हम भी कुदरत के ही साथ हो लेते हैं, कुदरत की इच्छाओं के साथ हो लेते हैं और अपने काम धाम खूब सलीके से, खूब ढंग से निपटाते हैं, ताकि दिनचर्या हमारी शानदार रहे। दिनचर्या जब शानदार रहेगी तभी जीवनचर्या शानदार होती है। चलिए हम आज के इस कार्यक्रम में किताबों से कीजिए दोस्ती, कौशल विकास से उद्यमिता विकास और मेकअप आर्टिस्ट के क्षेत्र में कैरियर, जी हाँ, ये बिंदु हैं जिन पर हम विचार करेंगे बारी बारी से। साथ ही साथ हम फिल्म संगीत का लुत्फ भी उठाएंगे। लेकिन शुरुआत फिर वहीं से कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसानों की, हमारी और आपकी, वो है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई करके ही तो हम ज्ञान की रोशनी पाते हैं, वरना यदि जीवन से पढ़ाई को निकाल दिया जाए तो लगता है कि सब कुछ अंधेरा साहा होता चला जा रहा है। तो इसीलिए ज्ञान की रोशनी चाहिए और उसके लिए पढ़ाई लिखाई होना बड़ी ज़रूरी है। शिक्षकों का होना, अभिभावकों का होना, माता पिता, गुरुदेव, परिजनों का होना, ये सभी हमारे लिए शिक्षक सदृश ही होते हैं। वो कहते हैं ना कि सबसे प्राथमिक पाठशाला घर होता है, परिवार होता है, आंगन होता है। तो ये प्राथमिक पाठशाला है जहाँ से नागरिकता का पाठ इंसान सीखता है, कैसे माता पिता के लाड़ प्यार, चुंबन, दुलार से और साथ ही साथ उनके अनुशासन से भी।

तो अनुशासन और लाड़ प्यार का जब संतुलन रहता है तो शानदार व्यक्तित्व तैयार होता है बच्चों का, और बचपन में जैसी लत लग जाती है ना, उसकी छाप जिंदगी भर समझ में आती है, दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए बचपन जो है वो बहुत ही सलीके का, जितनी चीज़ें सीखी जा सकें बचपन में, पैर धोइए, हाथ धोइए, कपड़े साफ़ रखिए, कपड़ों को अच्छी जगह पे रखिए, तमाम चीज़ें, भोजन कीजिए कैसे करना है, बात कैसे करना है, कैसे अदबो एहतराम होता है, ये बचपन में सीखी जाती है। और इसके लिए हमें लगता है कि विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये परिवार ही प्राथमिक पाठशाला है। लेकिन हाँ, जब हम पाठशाला जाते हैं, परिवार से बाहर निकलकर एक विद्यालय के चार दीवारी में जाते हैं, तो वहाँ हमारा सामना किताबों से होता है। और ये किताबें वो टूल्स हैं हमारे लिए, जिनके आधार पर हम अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम सीखते हैं। ताला, माला, मामा, ऐसे शब्द जो मिलते हैं देखने को, धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता है। किताबें ही तो हैं जो हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। यदि किसी शब्द को ढूंढना हो, अंग्रेजी का शब्द है जिसका मीनिंग नहीं आ रहा है, हम क्या ढूंढते हैं? डिक्शनरी, शब्दकोश, और वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हाँ, इसका यही मीनिंग है। किसी किसी शब्दकोश में तो प्रयोग भी हैं शब्दों के, तो हम प्रयोग भी सीख सकते हैं, सीख जाते हैं। तो बात किताबों की हो रही है, किताबों से कीजिए दोस्ती। किसको दोस्त बनाया जाए? अच्छा तो यही हो कि घर में बैठ करके और किताबें पढ़ ली जाए। आज का युग दोहराना पड़ेगा कि मोबाइल का युग है, जिसे देखिए जहाँ भी देखिए। अरे भाई, हद तो ये है कि किसी से मिलने जाइए, अगर उस परिवार में पांच सदस्य हैं तो पांचों के हाथ में अपना अपना मोबाइल है, और पांचों की अपनी अपनी अलग दुनिया है, पांचों खोए हुए हैं। आप यदि कोई बात पूछ रहे हैं तो धीरे से हल्की सी आवाज़, ऐसे इशारों में बात होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले पढ़ने के लिए किताबें होती थीं, लोगों से बातें होती थीं, खुलकर बातें होती थीं, आव भगत दिल खोल कर होता था। आज तो मोबाइलों ने हमारे समय को चुरा लिया है, हमसे छीन लिया है हमारा समय, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ने के लिए, अब आप देखिए जरा सा दोनों में तुलना हम लोग कर रहे हैं, चलिए तुलना करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं, इसके बाद फिर और बातें होंगी।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जी हाँ, RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और किसी के झांसे में नहीं आई है, क्योंकि आज की दुनिया विज्ञान की दुनिया है, तकनीकों की दुनिया है। तो तकनीकें अगर हैं तो फिर हमें बेखबर नहीं बल्कि बाखबर होना चाहिए। चलिए हम फिर से वहीं लौट जाते हैं, किताबों की दुनिया। किताबें पढ़ने के लिए भी हैं और मोबाइल से जो पढ़ते हैं उसकी किरणें हमारे चेहरे पर, हमारी आँखों पर चमकती हुई, चमकते हुए स्क्रीन को हम देखते हैं ना, तो हमारी आँखें अफेक्टेड होती हैं, प्रभावित होती हैं। एक किताबों में तो ऐसा होता कुछ नहीं है, किताबों पर रोशनी पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन हमारी आँखों पर होता है, किताबों से टकरा कर रोशनी आँखों तक आती है तब हम अक्षरों को देखते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई चमक रहा है सब कुछ, तो इसी से होशियार, किताबें सबसे बढ़िया साधन है स्वाध्याय का, मोबाइल की अपेक्षा तो खैर कई गुना बेटर। कई कई चीज़ें हैं, जब हम पढ़ते हैं किताबों को तो उसकी वर्तनी को भी देखते हैं, इंग्लिश में है तो स्पेलिंग को भी देखते हैं। किताबें लिखने वाले काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से और बहुत ही जी जान से जुट करके रचना करते हैं, उपन्यास, कहानियाँ, गीत, नाटक, लेख, निबंध, टिप्पणियाँ, स्तंभ, बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। वैसे ही गणित के क्षेत्र में बहुत सारी किताबें हैं बाज़ार में, जिसको लेकर के विद्यार्थी स्कूल से लेकर के और कॉलेज तक लाभान्वित होते हैं। चार किताबें मैंने भी लिखी हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डीकोडेड, ये ऑनलाइन है, अपने बच्चों को दीजिए, वो पढ़ेंगे, उससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। पाँचवीं क्लास के लिए भी किताबें हैं। तो जो भी राइटर है वो अपने दिल की गहराइयों से और शानदार जानकारियों को निकाल करके जानकारियों के अनमोल तोहफे अपनी किताबों में रखता है। तो किताबों से दोस्ती कीजिए और अपना ज्ञान वर्धन कीजिए, अज्ञान की अंधेरी फिजा को समाप्त कीजिए, ज्ञानवान बनिए। अब यदि कौशल विकास की बात कर ली जाए तो कौशल विकास किसी व्यक्ति को विशिष्ट तकनीकी या व्यवहारिक कार्य में निपुण बनाता है, जबकि उद्यमिता विकास उस कौशल को एक सफल व्यवसाय और आजीविका में बदलने की प्रक्रिया है। वह युवाओं को नौकरी ढूंढने वाले यानी जॉब सीकर से हटा करके नौकरी देने वाले यानी जॉब क्रिएटर में बदलता है। तो ये करिश्मा है कौशल विकास का। कौशल विकास से उद्यमिता विकास तक का सफ़र यदि हम देख लें तो कई कई बिंदु इसमें मिलते हैं जहाँ पर हमारी निगाह जाकर रुक जाती है। जैसे मूलभूत प्रशिक्षण, यह सबसे पहला कदम है जहाँ सिलाई, बढ़ई, गिरी, कोडिंग, प्लम्बिंग या कृषि जैसे क्षेत्रों में तकनीकी कौशल सिखाया जाता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण को भी देखिए, कुशल कारीगर या तकनीशियन को बाजार की समझ, लाभ हानि का हिसाब और ग्राहक प्रबंधन सिखाकर उद्यमी बनाया जाता है। सरकारी सहायता और फंडिंग की बात की जाए तो कौशल विकास के बाद युवाओं को स्किल इंडिया, डिजिटल हब और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। एक बात तो हमें ये मानना ही होगा कि हमारी सरकार हमें नौकरी, जिसको बोलते हैं सरकारी नौकरी, हर किसी को तो दे नहीं सकती, क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या हमारे देश में शुरू से ही सीमित रही है। तो अब रह गया कि स्वरोजगार किया जाए। यदि रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे सकती तो हम स्वरोजगार कर सकते हैं, और स्वरोजगार का क्षेत्र इतना व्यापक है, इतना समृद्ध है कि जो उसमें गया वो उसे लगता है कि हम बेकार गए होते उधर, क्योंकि इसमें काफ़ी तरक्की और लोगों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर, जॉब गिफ्टर कहा जाए तक की सामर्थ्य क्षमता आ जाती है अभ्यर्थियों में। और यदि आप उद्यमिता विकास या कौशल प्रशिक्षण के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ये आपको देखना होगा कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, और उसी के हिसाब से विशेषज्ञों से मिलिए और उनसे बातें करिए, सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ने के पहले एक और नगमा सुन लेते हैं।

चलिए इस गीत के बाद एक नज़र डाल लेते हैं मेकअप आर्टिस्ट कैसे बने। जी हाँ, ये क्षेत्र जो है बहुत ही समृद्ध रहा है। मेकअप की बड़ी ज़रूरत होती है, ख़ास करके जब आप किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को परफॉर्म करने चलते होंगे तो वहाँ मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। शादी ब्याह में तो खैर है ही है, लेकिन ड्रामा में, नाटक में, सिनेमा में, ऐसे हर जगह पे तो मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रोफेशनल मेकअप कोर्स करें, स्किन टोन और फेस शेप समझें, सर्टिफिकेशन लें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और सोशल मीडिया या फ्रीलांसिंग के जरिए क्लाइंट से जुड़ें। और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए सही कोर्स का तो चुनना ज़रूरी है ही है। व्यवहारिक ज्ञान

और अभ्यास का भी होना ज़रूरी है। मेकअप किट तैयार करें, जैसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके करने के बजाय बेसिक और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, जैसे अलग अलग अंडरटोन के फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश और आई शेडो से अपनी वैनिटी बनाएं, पोर्टफोलियो बनाएं, अपने बेहतरीन मेकअप लुक्स की हाई क्वालिटी फ़ोटो और वीडियो शूट करें। यह आपके काम का प्रमाण होगा जो नए ग्राहकों को आपकी ओर आकर्षित करने में कामयाब होगा, काम आएगा। नेटवर्किंग और मार्केटिंग, अपने काम को बढ़ावा देने के लिए आजकल सोशल साइट्स बहुत सारे हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए। शुरुआत में अनुभवी मेकअप आर्टिस्ट के साथ असिस्टेंट के तौर पर भी काम करें ताकि आपको अच्छा अनुभव मिल सके। चलिए आगे बढ़ने के पहले हम एक नगमा सुन लेते हैं। There's something I want to tell you, girl. I don't know what it is. Just can't, I just can't. I just can't. You've done some kind of magic. Magic's

तो श्रोताओं, इन्हीं इसी गीत के साथ ही आज के युववाणी कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एक लोकगीत। गायक कलाकार हैं मंदाकिनी सिंह।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रदेश में आम लोगन के शिकायत के तुरंत समाधान खातिर आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के शुरुआत कल गई बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में मौजूद संवाद भवन में एक कार्यक्रम के शुभारंभ कैले। मुख्यमंत्री ओकरा सबके समस्या सुनले जे जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में मिलल समाधान से संतुष्ट ना रहलन। संगे संगे उ अधिकारी लोगन के समस्या के जल्दी से जल्दी समाधान करे के निर्देश दिले बाड़े। ए मौका पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल समेत कई गो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहन। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के आयोजन हर महीना के दूसरा मंगलवार के कल जाय। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर कुल 26 गो उम्मीदवार के पर्चा सही पावल गई बा। मिलल जानकारी के मुताबिक आज भइल नामांकन पत्र के जांच में 14 गो उम्मीदवार के पर्चा रद्द कर दहल गई बा। जनशक्ति जनता दल के बिना मानवी के भी पर्चा रद्द हो गई बा। यह उपचुनाव खातिर कुल 40 गो उम्मीदवार लोग अपन पर्चा दाखिल कैले रहे। मैदान में अड़ल प्रमुख उम्मीदवार में एनडीए के तरफ से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी आ जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर शामिल बाड़न। प्रत्याशी लोग 16 जुलाई से अपन नामांकन वापस ले सकता। एकरा बाद उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह दहल जाई। उपचुनाव खातिर वोटिंग 30 जुलाई के होई आ वोट के गिनती 3 अगस्त के कैल जाई। सुप्रीम कोर्ट चारा घोटाला के एगो मामला में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के जमानत रद्द करे से इनकार कर दिले बा। सीबीआई लालू प्रसाद के जमानत रद्द करे खातिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कैले रहे। संगे संगे अदालत झारखंड उच्च न्यायालय के ओ आदेश में भी हस्तक्षेप करे से मना कर दहलस जेकरा तहत लालू प्रसाद के जमानत मिलल रहे। अदालत राजद अध्यक्ष के पेंडिंग आपराधिक अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय के 6 महीना के भीतर सुनवाई पूरा करे के कहले बा। ई मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ल बा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 के दोबारा भइल परीक्षा के ओएमआर शीट आ रिकॉर्ड कैल गइल उत्तर जारी कर देले बा। एजेंसी बतौलस कि उम्मीदवार लोग एनटीए के वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपन आवेदन नंबर से लॉगिन करके अपन ओएमआर शीट आ उत्तर देख सकता लोग। उम्मीदवार लोग अपन निशान लगावल उत्तर के तुलना स्कैनर द्वारा पढ़ल गइल उत्तर से कर सकता लोग। जे कौनो उत्तर ना मिलत होखे तो उम्मीदवार प्रश्न के चुन के आपन चुनल गइल विकल्प पर निशान लगा सकता लोग आ 200 रुपया के फीस दे के ओकरा के चुनौती दे सकता लोग। एजेंसी साफ कैले बा कि चुनौती सही पावे पर फीस वापस कर दहल जाई। ओ एमआर शीट चुनौती के ई सुविधा ए महीना के 15 तारीख तक रही। मानसून के सक्रिय होखला से प्रदेश में बारिश के सिलसिला जारी बा। पिछला 24 घंटा के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्सा में भारी बारिश भइल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण जिला के चनपटिया में सबसे बेसी 141.2 मिलीमीटर बारिश भइल बा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहल गइल बा कि बिहान अररिया किशनगंज जिला में बहुत भारी बारिश हुई जबकि कटिहार मधुबनी पूर्णिया आ सुपौल

जिला में कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकता। राज्य के दूसरा जिला में भी बारिश के संभावना बा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार होत भारी बारिश के वजह से गंडक, बागमती, कमला बलान आ कोसी नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखल जा रहल बा। गंडक नदी के पानी गोपालगंज में खतरा के निशान से 102 सेंटीमीटर ऊपर चल गई बा। ओहिजा बागमती नदी रूनी सैदपुर में लाल निशान के लगभग 100 सेंटीमीटर, कमला बलान झंझारपुर में 120 सेंटीमीटर आ कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में 113 सेंटीमीटर ऊपर ऊपर बह रहल बाड़ी। एने महानंदा, परमान आ अधवरा समूह के नदी के पानी में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज कई जा रहल बा। पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में 4 गो पुलिसकर्मी के सस्पेंड कई गई बा। जे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई भइल बा ओकरा में 3 गो ASI आ गृह रक्षा वाहिनी के 1 गो जवान शामिल बाड़न। मिलल जानकारी के मुताबिक विभागीय जांच के दौरान ई बात सोझा आइल बा कि जब बंटी यादव के अपहरण भइल रहे ओही समय ई पुलिसकर्मी घटना वाली जगह

0: कांड में 4 गो पुलिसकर्मी के सस्पेंड कल गई बा। जे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई भइल बा ओकरा में 3 गो ASI आ गृह रक्षा वाहिनी के 1 गो जवान शामिल बाड़न। मिलल जानकारी के मुताबिक विभागीय जांच के दौरान ई बात सोझा आइल बा कि जब बंटी यादव के अपहरण भइल रहे वही समय ई पुलिसकर्मी घटना वाली जगह पर मौजूद रहन, बाकी एकरा बावजूद ई लोग कौनो कार्रवाई ना कैलस। भोजपुर जिला के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से पुलिस गाड़ी भंडाफोड़ कैले बिया। मौका से 3 गो अपराधी के चोर के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लील बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रसारण किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुने वाला सभी श्रोता भाई लोगों के मनु भाई की तरफ से नमस्कार बा और साथे साथे जुनिया भाई रौरो के नमस्कार बा।
1: नमस्कार मनु भाई और सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम।
0: देखें झुनी बहन, आजकल बारिश तो होते नहीं है
1: ना,
0: आ गर्मी ऐसे ही बढ़ रहा बा। ऐसन में भी हमनी के चारों तरफ रोपनी शुरू हो गई बा।
1: हाँ, बिया तैयार बा तो रोपनी तो शुरू हो गई बा नहर के पानी से।
0: आवत दिन देख ली कि बोरिंग वोरिंग चला के लोग पानी भर ले बा। ऐसन में थोड़ा सा भी बारिश हो जाए तो बड़ा किसान खातिर अच्छा होगी।
1: हाँ, चाहे देखिए नीचे से पानी गर्म रहता, ऊपर से धरती तवल रहता आसमान, तो इसमें तनी रिमझिम पानी बरसेला तो रोपनी कबार करे में अच्छा लगेगा।
0: जी जी,
1: लेकिन अब तक का करो, पानी तो अपना हाथ के चीज नहीं खे
0: ना। ऐसन में धूप भी निकलता, गर्मी भी थोड़ा उमस वाला रह तो थोड़ा हमनी के सावधानी बरते के चाहिए। गर्मी में कोनो भी काम करे के बाद तो बड़ा सोच समझ के करे के चाहिए, काहे से कि कभी भी तबियत यदि खराब
1: हो, धूप ला के तबियत खराब हो के देखा तनी सर्दी बुखार टाइफाइड सब पूरा जोर शोर से चलल बाटे।
0: जी जी, टाइफाइड तो पूछी मत, एकरा में अधिक आदमी परेशान बढ़न। आ कुछ लोग तो बुझाते नहीं कि टाइफाइड बा कि नहीं के बुखार बा कि ना, जांच कराओ तो पता चल गई टाइफाइड। हाँ, में थोड़ा सा हमने सावधानी बरते के चाहिए, परहेज करे के चाहिए और दवा समय पर जरूर ली। आजकल कोनो भी बीमारी होता तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ली और दवा ली।
1: सलाह ली बिना जांच करो ले देखी कुछ पता नहीं चला, जांच करा के ही दवा ली ही तो देखी।
0: आई आज के कार्यक्रम में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी भी।
1: हाँ हाँ,
0: देखी अभी तो हमनी के देश विदेश के तहत कुछ है खबर खबरात जानल
1: जी जी।
0: एक बाद हमनी के आज के किसान बानी भुवनेश्वर सिंह, आज के विषय बा टमाटर की खेती कैसे कर जाओ। आ यहाँ से बातचीत करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, तो ये बारे में जानल जी टमाटर की खेती के बारे में। नया दौर और नई बातें के तहत पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपनी कैसे कल जाओ, एक बारे में जानल
1: जी।
0: आज के नसीहत के तहत मेढ़ल एक जो खेत के मेढ़ बा काटी ना बल्कि मजबूत बनाई
1: बनाई। हाँ,
0: प्रश्नोत्तरी भी हुई। आ कार्यक्रम के अंत में हमनी के मौसम के पूर्वानुमान भी जानल
1: जाए,
0: बीच में कुछ संदेश भी सुनल जाए। तो इस तरह कार्यक्रम के संक्षिप्त जानकारी आ देखा तनी खबर लेके तैयार बनी। तो झुनिया बहन तनी फरिया फरिया के बताई आज के कौन कौन खबर बा।
1: तो देखिए।

0: मनु भाई, खबर बा कि गन्ना उद्योग मंत्री जी संजय पासवान सोमवार के पंजाब के मुकेरिया में स्थित इंडियन सुक्रोज लिमिटेड के भी दौरा कैलन। वो चीनी मिल के काम काज के देखे के साथ ही गन्ना गतिविधियन के निरीक्षण कैलन। मिल में पहुँचला पर प्रबंध निदेशक उनकर स्वागत कैलन। मंत्री कहलन कि बिहार सरकार किसान लोग के कल्याण खातिर हमेशा प्रतिबद्ध बाड़न। किसान लोग के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान मंत्री के पंजाब सरकार द्वारा गन्ना किसान लोग के हित में चलावल जा रहल विभिन्न कल्याणकारी या जतना जतना योजना चलावल बा, एकरा बारे में वहाँ से संबंधित अधिकारियन द्वारा जानकारी दिहल गई। तो देखें इ तरह कृषि संबंधी खबर देश विदेश के अंतर्गत। आ जैसन के रुआ कन्ही के एगो भेंटवार्ता के माध्यम से जानल जाए टमाटर के खेती के बारे में।
1: देखिए टमाटर बहुत जरूरी बा,
0: बहुत जरूरी।
1: आ टमाटर के देखते मानी कि भाव आसमान छू रहा बा, तो ऐसा में यदि हमनी के टमाटर के खेती कर जाओ तो कुछ भाव भी नीचे आ सकता, हमनी के शुद्ध और ताज़ा टमाटर भी मिली।
0: टमाटर भी मिली
1: तो ऐसे हमनी के टमाटर के खेती कर जाओ। आज टमाटर के खेती करे से एक साथ अनेक लाभ बा। झुनी बहन आई तो यही विषय पर जानल जाओ। आज के हमनी के भेंट करता बानी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, आप आज के किसान बानी भुवनेश्वर सिंह, ताई सुनल जाओ।

0: किसान भाइयों, अधौरा में एक किसान मुनेश्वर सिंह से हमारी भेंट हो रही है और देख रहे हैं कि ये अपने प्लॉट पर काफ़ी मात्रा में टमाटर की खेती किए हुए हैं, स्प्रिंकलर से सिंचाई हो रही है। कैसे ये खेती कर रहे हैं, बहुत हाल में अभी देख रहे हैं कि पौधे लगे हुए हैं, तो कैसे खेती करते हैं इसके बारे में जानेंगे। मुनेश्वर सिंह जी, आपका स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि आपको टमाटर की खेती करने की प्रेरणा कैसे मिली?
1: टमाटर की खेती पहले जैसे लोग यहाँ टमाटर, गोभी, बैंगन ये सब चीज़ के जैसे लोग च्वाइस नहीं करते थे, लेकिन बनवासी सेवा केंद्र जो है जो आया तब से थोड़ा थोड़ा ये लोग को जैसे खेती के, मैंने आपकी टमाटर की खेती, गोभी की खेती और बैंगन की खेती के बारे में जैसे किसानों को जैसे जानकारी मिली। कुछ ऐसा गांव है यहाँ पर, जैसे पहले बनवासी सेवा केंद्र आने के पहले लोहरा एक गाँव है जहाँ पात गोभी बनवासी सेवा केंद्र से बेचने के लिए लोग ले गए और वहाँ ले गए तो एक महिला उपात गोभी को जैसे छीलते छीलते छीलते छीलते पूरा जैसे उसको छील दी। उसमें आपको कुछ जब उसको नहीं मिला तो लास्ट में वो महिला कहती है कि एक का चीज़ दे ली कि जब सारा पत्ते गर्म निकले से गर्म कुछ खाए वाला चीज़ें नहीं खे। बहुत ही हुआ तो है इस तरह के महिलाएं जो है सो पहले लोग देखे नहीं थे कि हाँ आज जो है पहाड़ पर सब्जी की खेती लगभग जैसे समझिए कि 90% से ज़्यादा लोग करने लगे हैं, केवल अपने खाने के लिए लगाए क्योंकि यहाँ पानी की तो कमी है ना
0: जी।
1: तो जैसे हम लोग थोड़ा मोड़ा ही करते हैं खाने पीने के लिए, कुछ लोग करते हैं बिजनेस के अथी से, ख्याल से
0: जी। लेकिन आपका देख रहे हैं कि बड़े प्लॉट में लगा हुआ है
1: जी,
0: तो ये केवल खाने क्या है कि इसको बेचते भी हैं?
1: नहीं, इसको बेचते हैं
0: जी,
1: बेचते हैं मार्केट जी। हाँ,
0: मार्केट में
1: जी।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि कितने दिन का बीज लेकर के इसको लगाए हैं? अपने से बीज उत्पादन किए थे?
1: नहीं, अपने से बीज उत्पादन किए हैं इसका
0: जी।
1: अपने से बीज उत्पादन किए इसका, जैसे नर्सरी तैयार करने के लिए आपको जो है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई बेड बनाना पड़ता है
0: जी,
1: और उसमें बीज को डाल करके बर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ पुराना गोबर के खाद उससे ढका जाता है
0: जी,
1: और ढकने के बाद में जब बीज अंकुरित ले ले तो उसको ये खर को हटा देते हैं, खर से ढकना पड़ता है इसको या पुआल से, तो पुआल को हटा दिए
0: जी,
1: बीज जैसे उस पर धीरे धीरे पानी देते रहा, 15-20 दिन में इसका पौधा तैयार हो जाता है
0: जी।
1: जब पौधा तैयार हो गया तो इसको जैसे हम लोग खेत में लगाते हैं।
0: खेत में ले
1: जी, खेत में ले।
0: अच्छा, कितना इसकी खेत की तैयारी के लिए आप क्या किए हैं?
1: खेत की तैयारी के लिए जैसे अब इसे हम लोग तो जैसे साइंटिफिक अथी से तो नहीं, लेकिन ऐसे जो है इसमें गोबर के खाद हम लोग पहले डालते हैं
0: जी,
1: डाल करके 2-3 चास पूरा जोताई करते हैं
0: जो
1: खेत हल्का हो जाए
0: जी,
1: खेत के मिट्टी जो है हल्का हो जाए
0: जी,
1: और इसके बाद में तब लास्ट जोताई की पर
0: जी
1: कट में जैसे 1 किलो आपको DAP आधा किलो यूरिया 250 ग्राम पोटास के हिसाब से इसमें छीट देते हैं
0: जी
1: मिट्टी पर
0: जी,
1: और छीट करके

0: पट्टा दिवा देते हैं और तब पौधा लगाने के लिए, जब डायरेक्ट हम लोग जैसे पौधा में कुछ दे करके, पहले जब हम लगाते थे टमाटर तो देखे जड़ तर दे करके इसको देखे तो पौधा में गलन का जैसे प्रकोप ज़्यादा हो गया
1: जी,
0: तो इसलिए हम लोग मिट्टी में खाद को मिलवा देते हैं
1: जी,
0: और मिट्टी में मिला करके लगाते हैं, मैंने समझे कि जैसे उसका अच्छा रिजल्ट मिला, उपज अच्छा होता है।
1: कितना दूरी पर लगाए हैं?
0: दूरी इसका सर जो है सो आपको 2 फीट जो है पौध से पौध की दूरी से 60 सेंटीमीटर
1: जी,
0: लाइन से लाइन की दूरी भी 60 सेंटीमीटर
1: रखे हैं
0: जी। हाँ,
1: इतना जगह घेर लेता है
0: जी। हाँ, इतना जगह घेर लेता है, बल्कि संकर प्रजाति के जो भी टमाटर कुछ लगाए थे पहले तो लगभग आपको जैसे 75 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए और उतना जगह जो है सो कवर कर लिया
1: जी। अच्छा, लगाने के बाद फिर इसकी निकाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती होगी?
0: जी हाँ, निकाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको 60 से 65 दिन में जैसे जब इसमें फल लगना शुरू होता है, फल फूल आने लगते हैं
1: जी,
0: तो इसके पहले निकाई गुड़ाई खेत के अनुसार, खेत के अनुसार जैसा भी खेत हो
1: जी,
0: उसके अनुसार से इसकी निकाई गुड़ाई कराना पड़ता है
1: जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जो आपका देख रहे हैं कि स्प्रिंकलर से भी सिंचाई आप कर रहे हैं
0: जी,
1: और पारंपरिक विधि से जो सिंचाई करते थे, तो दोनों में अंतर क्या है?
0: टमाटर के लिए जो है ना स्प्रिंकलर से सिंचाई जो हो रहा है इसके लिए बहुत लाभदायक है, और समझिए कि तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ जो है सो प्रकृति के ऊपर ही खेती है, तो इसमें पानी हम लोग को कम खर्च होता है और उपज अच्छा मिलता है
1: जी।
0: इसीलिए हम लोग स्प्रिंकलर जो है सरकार के द्वारा हम लोग को मुहैया कराया गया
1: जी,
0: और हम लोग उसी से जैसे लेकर के अभी स्प्रिंकलर से ही सिंचाई कर रहे हैं
1: जी।
0: जी,
1: अच्छा, ये इसमें कितना स्प्रिंकलर से सिंचाई देते हैं आप?
0: स्प्रिंकलर जो है सर सप्ताह में एक बार चलाते हैं इसमें
1: जी,
0: वो हल्का हल्का आधा घंटा एक घंटा चलाए और इसके बाद में फिर बंद कर दिए उसको
1: जी।
0: तो ऐसे करते करके आपको जैसे समझिए कि मैंने 8-10 सिंचाई से ज़्यादा ही मोटा मोटी लग जाता है। जब पौधे जड़ पकड़ लेते हैं तो उसमें उतना पानी की आवश्यकता टमाटर में नहीं पड़ता है
1: जी,
0: तो जब तक जड़ नहीं पकड़ा है तब तक तो थोड़ा ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ता है
1: जी। अच्छा, उर्वरक वगैरह ऊपर से कुछ डालते हैं?
0: हाँ, जब देख लेते हैं कि पौधा हमारा पूरा जड़ पकड़ लिया
1: जी,
0: अपना ही जैसे थोड़ा सा देख लिए कि हाँ ये जैसे अपना रंग में आ गया पौधा
1: जी,
0: तो इसमें यूरिया जो है जड़ तर नहीं, जड़ से छोड़ करके
1: जी
0: हम लोग पूरे खेत में यूरिया के छिड़काव कर देते हैं। मैंने ज़्यादा तो नहीं
1: जी,
0: लेकिन बीघा में 10 किलो के हिसाब से
1: जी
0: 10 से 15 किलो यूरिया छीट करके और उसको निराई गोड़ाई करा देते हैं।
1: करा देते हैं
0: जी हाँ,
1: और आपका फसल तैयार हो जाती है
0: जी। हाँ,
1: कितने दिन में फल देने लगता है?
0: 60 से 65 दिन में आपको उसमें फूल फल पकड़ना शुरू हो जाएगा।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो कच्चे टमाटर को आप बेचते हैं कि पकाने
0: नहीं,
1: के बाद?
0: पकाने के बाद,
1: पकाने के बाद बेचते हाँ, हैं जी। और उसके अलावा कुछ ध्यान देना पड़ता है?
0: हाँ, उसके अलावा टमाटर खेती में जैसे है कभी कभी जैसे इसमें मुजैक लगता है
1: जी,
0: जिसे जिसको झुलसा कहते हैं
1: जी,
0: तो वो कभी कभी जैसे इसमें लगता है तो उसके लिए जैसे हम लोग इंडोफिलम 45 की छिड़काव करते हैं
1: जी,
0: या डाइथेनम 45, इंडोफिल Z78, जो भी फंगीसाइड मिल जाए उन्हें फफूंदी नाशक की छिड़काव करके इसको हम कंट्रोल करते हैं।
1: कंट्रोल करते हैं
0: जी।
1: और देखते हैं कि वो पौधा जो है बिल्कुल खड़ा है लेकिन उसका पत्ती सिकुड़ जाता है, उसके लिए क्या करते
0: हैं? वही तो फफूंदी नाशक उसके लिए प्रयोग करते हैं जी। हाँ
1: जी, और इस तरह से फसल लेते हैं
0: जी।
1: मुनेश्वर सिंह जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखिए झुनी बहन, कितना बढ़िया मुनेश्वर जी से, आई श्याम सुंदर तिवारी जी से हमने के जानकारी मिलल टमाटर की खेती कैसे कैल जाए, कितना लाभ मिले। आ सही में इस तरह से हमने के पुराना पत्ती छोड़ के नया आधुनिक तौर तरीका से टमाटर के या कोनो फसल के खेती कैल जाए तो बहुत लाभ ले सकते हैं। तो आई अब हमने के आगे कुछ चर्चा करे से पहले कुछ संदेश सुन ले जा, फिर आगे चर्चा हुई।

ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी

0: तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतरवर्ती खेती एवं रख रखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: अभी हमनी के संदेश सुनो तहनी झुनिया बनी
1: जी जी
0: हाँ देखी जैसे कि बतेनी कि नया दौर नई बातें के तहत हमनी के पैडी ट्रांसप्लांटर के सिद्धांत के रोपनी
1: कैसे करे के चाहिए
0: जी जी, जी। देखी एकरा खातिर हमनी के सबसे पहले तो ये जान लेला कि पैडी ट्रांसप्लांटर जोन बा ये वो ऐसन मशीन बा जौना के धान के पौधा के एगो निश्चित गहराई और दूरी और कतार में एक साथ कई गो पौधा उठावेला और माटी में सेट करेला सुरक्षित रूप से रोप भी देला ये चार चरण में पूरा करेला जैसे कि मैट टाइप नर्सरी एकरा पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई करे खातिर हमनी के जो धान के बीजा डाल जाए तो वो सामान्य तरीका से न डाल के एकरा खातिर प्लास्टिक के ट्रे या पॉलीथीन पर लगावल जाला आ धान के बीज के एक तरह से उगावल जाला जौना के जड़ घास के तरह माने मैट के तरह आपस में चिपक जाए अगर पौधा जौन बा 18-20 दिन के हो जाए माने 18 से 20 दिन
1: 20 दिन
0: 21 दिन के ही पौधा एकरा में लगावल जाला।

0: जौन पौधा 3-4 पत्ती के हो जाला ओकरे के एक हमनी के पैडी ट्रांसप्लांटर से लगा सकते हैं।
1: खेत में पानी भी कम से कम 2-3 सेंटीमीटर
0: बहुत कम माने बहुत कम पानी रहे
1: के चाहिए
0: तब जाके एकरा के हमनी के लगा सकते हैं। और देखिए एकरा में हमनी के जरूरी बा पौधा जितने माने अच्छा रही उतने को रोपाई भी अच्छा हुई। तो यही से सारा किसान लोग एकरा के माने 18-20 दिन के पौधा ही लगा
1: लगा
0: जो हाँ। के माने 3-4 पत्ता हो जाला। पौधा के उठाए वाला जो काम बा पौधा के उठावेला आ उठावे खातिर एकरा में कई तरह के माने काम बा। एक तरह चटाई वाला पौधा भर दिया जाला और ओकरा के आराम से पौधा ले जाके सटा देला जमीन पर आ पीछे से जोन बा गीला माटी देला माटी ओकरा सोड़ के माने जड़ के ढक देला। एकरा से का होला कि पौधा हवा से या कहीं माने माने बाहर ना फेंकाए बढ़िया से माटी में गड़ जाला। तो ऐसे पैडी ट्रांसप्लांटर जोन बा कई तरह से माने लाभ पहुँचावेला। एकरा में पानी के भी बचत बा खाद के भी बचत बा आ बहुत कम समय में बहुत हाँ, अधिक
1: मजदूरी के भी बचत बा
0: जी बहुत अधिक रुपये हमनी के कर सकते हैं। जा मशीन में गियर और लीवर होला जोना के मदद से हमनी के पक्ति के बीच के दूरी माने रुपाई गहराई के दूरी घटा बढ़ा सकते हैं। जा ओकरा के हमनी के निश्चित तौर पर जैसे जितना इच्छा कर सकता माने आमतौर पर 15-20 सेंटीमीटर और रुपाई गहराई जोन बा 1-3 सेंटीमीटर के आसानी से तय कर सकत बन जाए। एक तरह से पैडी ट्रांसप्लांटर से ये खेती कर जा तो बहुते लाभ बा। एकरा से दूरी भी बढ़िया बनल रही आ गहराई भी अच्छा रही आ एकरा से अच्छा आमदनी भी हो सकता। तो एक तरह से हमने पैडी ट्रांसप्लांटर से खेती करे के चाहिए कुछ ना तो थोड़ा सा ही करी लेकिन करी
1: देखिए लाभ भी बहुत बा ना
0: जी जी
1: ऐसे अब तो करबे करी आदमी
0: जी लाभ तो कुछ
1: में हां सही से देखभाल करी तो एकर में उपज में बढ़ोतरी भी काफी होई
0: जी जी।
1: तो देखिए तो बड़ा बढ़िया रहल कि पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपनी कैसे करे के चाहिए
0: जी।
1: किसान भाई लोग धीरे धीरे सबके मतलब इस्तेमाल अब करी हन। देखी मनु भाई
0: जी जी
1: हमनी के आज के नसीहत बा कि मेड़ के काटी ना ओकरा के मजबूत करी।
0: अरे मत के एकरा में तो देखी बहुत से किसान ऐसा बनल कि मेढ़ के काट के एकदम पतरा कर देते ओकरा पर चले लायक भी नहीं रहत। तो देखी एकरा से अपने रुआ नुकसान करते जितना किसान भाई लोग बढ़न ओकरा के खेत के मेढ़ ना काटी तो ओकरा से एगो ना अनेक हानि बा आ ओकरा से फायदा बहुत बा अगर मेढ़ के मजबूत कर दी। तो सबसे तो पहला फायदा बा कि मेड़ के मजबूत और ऊंचा कर दी तो मिट्टी के कटाव रुक जाला
1: खाद दूसरा के खेत में ना बह के जाई
0: नमी के संरक्षण हो जाई भू जल के स्तर बढ़ जाई एकरा से खाद के बहे वाला काम जान बा बंद हो जाई विवाद से मुक्ति हो जाई। अगर मान ली कि आर मोटा बा तो कोई के काट के उन्हें उन्हें करे में दिक्कत बा सोचे के पड़ी ज्यादा ना समय लगी आ पतला हाल रख ले तो कोई काट के खाते ने एक बिता इन्हें उन्हें करते जो उनके विवाद के कारण हो जाए मारपीट हो जाए आ बहुत तरह के झगड़ा झंझट के घर हो जाए। तो ऐसे देखें
1: मनु भाई मेड़ जौन बा खाली देखे कि मैंने हमारे मतलब खेत के सीमा बा एक तरह से सुरक्षा कवच बा
0: बहुत
1: जौना की खेत के संभाल के रखले बा मेड़ अपन मजबूत रखी एक पर अगर घास उस लगा दे रौरा तो काफी मजबूत चाहे अगर चौड़ा मेड़ होकर तो काफी जगह जगह अगर पौधा भी रुआ लगा देता नहीं छोटा छोटा
0: जी जी
1: तो ओकर देखी का होता कि डबल फायदा होता वो मेड़ के जौन जौन पत्ती उत्ती जौन गिरता रुआ खेत में सड़ के बहुत बढ़िया खाद बनता
0: जी
1: उर्वरक होता आ देखी मेड़ भी मजबूत होता
0: ओकरा पर कोनो पौधा रुआ लगा दे थोड़ा सा मजबूत मेड़ बा तो चाहे फल वाला लगाई या चाहे बिना फल वाला लगाई वो पशुओं के चारा वाला भी लगा सकते नहीं
1: हाँ
0: ओकरा से रुआ आमदनी बढ़ी आय बढ़ी राउर अपन आर्थिक स्थिति अच्छा रही आ एक इतने ना ही हमनी के जौन प्राकृतिक पौधा जौन बा उगे वाला पौधा बा तो ओकरा पर मेड़ पर उगेला तो ओकरा मधुमक्खी और अन्य मित्र कीट जौन होलन अपन घर बसा लो आ जौना के चलते ई कीट जौन बनल फसल के नुकसान पहुँचा वाला कीटन के समाप्त कर दिलन। ऐसे देखी रुआ कीटनाशक के भी बच जाए खर्चा आ कीटनाशक डाले के भी कीट अपने आप को खा के नुकसान माने जो नुकसान करो कीट खा के खत्म कर
1: दी
0: खत्म जब कर दें तो अपने आप समाप्त हो जाए तो फिर हमनी के अलग से कीटनाशक डाले के भी जरूरत ना पड़ी। हाँ देखी एकरा से हमनी के जैविक उर्वरता में भी वृद्धि होला
1: बहुत फायदा बा हाँ।
0: जी मेड़ पर उगल घास जोन बा झाड़ी बा ईश्वर
1: हाँ, हाँ।
0: के प्राकृतिक खाद बनेला आ जोन मिट्टी में मिल के मिल जाला जोन मिट्टी के उपजाऊ बनाला। तो एक तरह से देखी कई तरह के लाभ बा आ ऐसा हमनी के अगर चाहल जाओ तो खेती से

0: आमदनी अच्छा कर सकते जा। जूनी बहन देखिए आज के कुछ प्रश्न बा जैसे कि हमने बतैनी ही जा कि पैडी ट्रांसप्लांटर जोन बाटे एकरा में जोन बीज बा कितना दिन के रह होके चाहिए, कितना पत्ती वाला होगी तो ओकरा के लगा
1: लगावे के चाहिए।
0: तो हाँ। किसान भाई लोग यदि हमनी के सुनत तन बत कही तो ए हमनी के ई अगर उत्तर लिख के भेजस हमनी के पता बा कार्यक्रम किसान बाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम पिन कोड बा 82115 ए तरह से उस लोग हमनी के भी भेज सकते। आज आज के मौसम के तनी मिजाज देखल जा ओकरा पहले कुछ संदेश भी बा कौन कौन
1: तो देखी मौसम जौन बाटे बात कहानी तो देखी मौसम विभाग जौन बाटे मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान के अवधि में 15 से 19 जुलाई के दौरान आसमान में घना बादल छायल रही आ जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चली आ हल्का वर्षा होके के भी अनुमान बा। एकरा में अधिकतम तापमान जौन बाटे 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान जौन बाटे 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। आ देखी मनु भाई सापेक्षित आर्द्रता जौन बा सुबह में 90 से 95% आ दोपहर में 60 से 65% रहे के संभावना व्यक्त कल जाता। पूर्वानुमान के अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चले के संभावना बा। आ जौन दक्षिणा आ पूर्वैया पछिया हवा बहेला ओकरा बाद दक्षिणा आ पूर्वा हवा बहे के भी अनुमान बा, ये अनुमान लगावल जाता।
0: जी जी जी।
1: आ देखी मनु भाई आवे वाला दिन में वर्षा के संभावना के देखते हुए खड़ा फसलन में पटवन स्थगित कर दही आ खाद आ कीटनाशक के छिड़काव जौन बा जब भी करी आसमान साफ रहला पर ही करी, काहे कि बारिश जब रहता आसमान में बादल रहता तो ओ घड़ी लोग न करी
0: धुआ जी सब
1: धुआ जाई। आ देखी पिछला कुछ दिन में जौन वर्षा भइल ह उ जल के लाभ उठाते हुए धान के सबौर सुरभित जौन बा भागलपुर कतरनी सबौर दीप किस्मन के बोवाई करी। बोवाई से पहले बीजन के कार्बेंडा जिम 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करी आ 10 से 15 दिन के नर्सरी में समय पर निराई गुआई करी आ धान के किस्म जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना आदि के सीधा बुआई भी कर सकीला। पुराना नर्सरी में समय पर खर पतवार नियंत्रण करी आ जमुना किसान के पास सिंचाई के सुविधा उपलब्ध न होके उकरा के धान तैयार हो गए तो रोपाई जल्द से जल्द कर दही। यही तरह से देखी मक्का के खेती बाटे खरीफ मक्का के बुआई आसमान साफ रहला पर ही शीघ्र सम्पन्न कर दही। खेत के जोताई में 10 से 15 टन गोबर के सड़ल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करी। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन 60 किलो स्फुर और 50 किलो पोटास के व्यवहार करी। अनुशंसित मक्का के किस्म जैसे कि सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11
0: अरहर के खेती जैसे कि ऊंचा जमीन में अरहर के बुआई हमने के आसमान साफ रहला पर कर सकत बन जाए। एक अच्छा किस्म बाहर पूसा बाहर बैगो पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 किस्म के बुआई हमने के 60x20 सेंटीमीटर के दूरी पर करी। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन 45 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम गंधक के प्रयोग जरूर करी। अरहर के अनुशंसित बीज दर जौन बा 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होला। आम लीची जौन बाड़ी सन ई बागवानी खातिर विशेष सलाह बा कि फलदार वृक्षन के लिए खोदल गए गढ़ा में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशक देकर ऊपर तक भर दी जहाँ लगावे के बाद बागवानी कहते हैं जहाँ भी माने लगावे के बाद ओकरा में हमनी के अभी माने समय आ गई बा बहुत जगह लागत भी बा
1: लागत
0: तो मौसम जोन बा आम के पौधा के रोपाई खातिर अनुकूल बा। गड्ढा में मिट्टी बैठ जाए तब पौधा के रोपण करी। कलमी आम खातिर 10x10 मीटर यानी 10 मीटर लंबा चौड़ा पर बीज बीजू आम खातिर 12x12 मीटर की दूरी रखल जा। आम्रपाली किस्म खातिर सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर के दूरी पर ही कल जा सकत बा। परिपक्व वृक्ष में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नेत्रजन 300 ग्राम फास्फोरस आ 700 ग्राम पोटास और 80 से करीब 100 किलोग्राम अच्छा तरह सड़ल गोबर के खाद के जरूर प्रयोग करी। भैंस पालन खातिर या पशुपालन खातिर हमें सलाह बा कि माह के अंत में भैंसन के ब्याह शुरू हो जाला और ब्याह वाले पशुअन के विशेष ध्यान

0: गला घोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव खातिर जून माह में टीका जरूर लगवाई, ए माह में अवश्य लगवा दी।
1: अगर न लगल हो खेता
0: जी जून में ना लगल होगी तो ए माह में लगा दी। देखिए आज तो बीत गई कल के जो मौसम बा, तो काल खातिर वर्षा हमने देखी 7.0 mm, यानी वर्षा कम बा, माने वर्षा हो भी सकता ना भी
1: बराबर।
0: अधिकतम तापमान काल के 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता काल 80% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 60% रहे के उम्मीद बा। हवा के गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकत बा। यही के साथ साथ देखिए समय तो एकदम उड़ा गए, चलत चलत वेरा से सभी श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा, और साथे साथ झुनी बहन रौरो के नमस्कार।
1: नमस्कार मनु भाई, सब श्रोता भाई बहन लोग के चले चले के बेरा में झुनी बहन के तरफ से प्रणाम।

हमारे किसान भाई अभी अपना प्रसारण सुन रहे थे, किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत।

राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में इस समय आप सुन रहे हैं असद भोपाली का लिखा गीत। गायक कलाकार हैं शारदा सिन्हा। फिल्म है मैंने प्यार किया।

0: सुन, सोचतानी की काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई।
1: त रोकले के बा?
0: रोकले तो कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत की कैसे मदद मांगी।
1: हमरा से?
0: तुहरा से? तो बतावो।
1: आकाशवाणी बा ना, हम सुनले बानी की आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
0: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा?
1: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से वही जगह पहुँच जाई।
0: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे हुई?
1: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700014242।
0: ओ 8700014242।
1: हाँ।
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने पवन सिंह को सुना, आइए सुन लेते हैं एक नगमा बलम परदेसिया फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में।

अभी आपने बलम परदेसिया फिल्म का यह गीत सुना। गायक कलाकार थी आशा भोसले। अनजान के लिखे गीत की तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने। श्रोताओं आइए सुनते हैं हेमलता के साथ जसपाल सिंह को। फिल्म का नाम है नदिया के पार। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: कार्यक्रम का आखिरी नगमा आइए सुन लेते हैं, आशा भोसले और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में राममूर्ति चतुर्वेदी ने गीत लिखा है, संगीत रचना है एस एन त्रिपाठी की, फिल्म है अमर सुहागन।
1: आ चुहो
2: चुहो
1: चुहो

0: कार्यक्रम का आखिरी नगमा आइए सुन लेते हैं, आशा भोसले और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में राममूर्ति चतुर्वेदी ने गीत लिखा है, संगीत रचना है एस एन त्रिपाठी की, फिल्म है अमर सुहागन।
1: आ चुहो
2: चुहो
1: चुहो

अमर सुहागन फिल्म के इसी नगमे के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। जिला जनसंपर्क कार्यालय रोहतास से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 14/7/2026 को पटना स्थित संवाद मुख्यमंत्री सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न जिलों से प्राप्त लंबित जन शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आवेदकों ने भाग लिया तथा अपनी व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। इस राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में रोहतास जिला के 2 आवेदकों ने भाग लिया। इनमें कोचस के रहने वाले राहुल कुमार सिंह ने आपूर्ति विभाग से संबंधित तथा सासाराम की रहने वाली सीता देवी ने कृषि विभाग से संबंधित अपनी शिकायत समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। दोनों मामलों पर ऑन द स्पॉट निष्पादन करते हुए आवेदकों की समस्याओं का समाधान किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जिला स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं। जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों में जिन मामलों का समाधान नहीं हो पाता तथा आवेदक समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसे मामलों को प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जा रहा, ताकि उनका शीघ्र एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं एक अन्य सूचना के अनुसार महिला एवं बाल विकास निगम रोहतास तथा जिला प्रशासन रोहतास के संयुक्त तत्वावधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लेकर महिला सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता एवं कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मोहम्मद शमीम अंसारी, जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम रोहतास ने छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 181, बाल विवाह निषेध, लैंगिक समानता, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा तथा महिलाओं और बालिकाओं से संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। वक्ताओं ने छात्राओं से शिक्षा को प्राथमिकता देने, आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में बिना संकोच संबंधित हेल्पलाइन एवं प्रशासन से सहायता लेने का आह्वान किया। महिला एवं बाल विकास निगम रोहतास ने सभी छात्राओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बने तथा किसी भी आपात स्थिति में महिला हेल्पलाइन 181 का उपयोग करें। वहीं जिला समाहरणालय कैमूर से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 14 जुलाई 2026 जिला पदाधिकारी महोदय

कैमूर द्वारा प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी संचालन एवं जनहित में हिमांशु पांडे सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि श्री हिमांशु पांडे को विशेष कार्य पदाधिकारी 2, जिला गोपनीय शाखा तथा जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी का दायित्व भी सौंपा गया है। वे अपने पूर्व दायित्वों के साथ साथ इन महत्वपूर्ण शाखाओं के कार्यों का भी निर्वहन करेंगे। श्री उज्ज्वल कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी 1 के रूप में कार्य करते रहेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं एक नगमा।

सोचता हूँ इसी नगमे के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सुनी लोगों की शिकायतें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। जनशक्ति जनता दल की वीणा मांडवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द। ईरान अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष की चपेट में आने से गोपालगंज के एक युवक की मौत। दुबई में मर्चेंट शिप पर तैनात था युवक। और मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आवेदन प्राप्ति केंद्र और सहयोग पथ का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने उन आवेदकों की समस्याएं सुनी जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में मिले समाधान से संतुष्ट नहीं थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 129 आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें से 100 आवेदकों के मामलों का निष्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक 90% समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार तथा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में किया जाएगा। शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज नामांकन पत्रों की जांच में 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए। जनशक्ति जनता दल की वीणा मांडवी का पर्चा भी रद्द हो गया है। उपचुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए थे। प्रमुख उम्मीदवारों में एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर शामिल हैं। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत का दावा किया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार को किसी भी दल से कोई चुनौती नहीं है।
2: मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा और ये युवा बांकीपुर के लोगों का भाई और बेटा बनकर समर्पण भाव से, सेवा भाव से इस क्षेत्र की सेवा करेगा।
0: इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जन समर्थन है।
3: बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। पूरा जन समर्थन, पूरा आशीर्वाद यहाँ के हमारे नीरज कुमार जी को मिल रहा है।

0: है, और सिर्फ अब मतदान का तिथि जब आ जाएगा और रिजल्ट होगा तो आप देखिएगा किसी की जमानत यहां बचने वाली नहीं है।
1: पटना जिला प्रशासन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने अधिकारियों को पिछले चुनावों में कम मतदान वाले बूथों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और मतदान के लिए जागरूक करेंगे। गौरतलब है 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 41 रहा था, जो राज्य के औसत से काफी कम था। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसके तहत लालू प्रसाद को जमानत मिली थी। न्यायालय ने राजद अध्यक्ष की लंबित आपराधिक अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय को 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने को कहा है। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी का है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कमजोर मॉनसून को देखते हुए विकसित भारत जी राम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती को लेकर छूट दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने बताया कि कम बारिश वाले जिलों में लीन पीरियड यानी काम के दिनों में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित जिलों में 19 जुलाई तक विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत काम कराया जा सकेगा।
0: जैसे ही वर्षापात कम होता है हम अपने श्रमिकों को काम उसमें देना शुरू करते हैं कि ये काम मांग आधारित है, तो जो श्रमिक काम मांगेंगे उस अवधि में काम विकसित भारत जी राम जी योजना में उनको हर हालत में मिलेगा। अगर आप काम मांगा और 15 दिन तक आपको काम नहीं मिला तो उसमें बेरोजगारी भत्ता भी देने का, रोजगार भत्ता भी देने का प्रावधान। और कोई काम कर रहा है और उसको अगर मजदूरी नहीं मिली तो 0.05% के हिसाब से जो मजदूरी समय पर भुगतान नहीं करेंगे उनके वेतन से रिकवरी करके उन श्रमिकों को भी भुगतान किया जाएगा।
1: संशोधन के बाद शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और बांका में 10 अगस्त तक लीन पीरियड प्रभावी रहेगा। वहीं रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद और गया में यह पीरियड 9 अगस्त तक माना जाएगा। गृह विभाग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को शीघ्र विकास प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यटन, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत कार्ययोजना बनाने को कहा गया। बैठक में औरंगाबाद के जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा भी शामिल हुए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना

0: पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। ईरान अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष की चपेट में आने से गोपालगंज जिले के एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान थावे बाजार निवासी रोहन कुमार के रूप में हुई है, जो दुबई में एक मर्चेंट शिप कंपनी में कार्यरत थे। मृतक के भाई आलोक कुमार ने बताया कि जहाज पर हुए मिसाइल हमले में उनकी मौत हुई है।
1: 4 बजे भोर में उनको फोन आया कंपनी की तरफ कि आपके भाई इंजर्ड हो गए हैं, आपके मिसाइल गिरा है। तो वहाँ 3 घंटे बाद फिर फोन आया कि आपके भाई डेथ कर गए। उनका सिप गिरा हुआ था सऊदी अरब, सर नॉक कंपनी में काम करते थे।
0: पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें 3 ASI और गृह रक्षा वाहिनी का 1 जवान शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभागीय जांच के दौरान यह बात सामने आई कि बंटी यादव के अपहरण के समय ये पुलिसकर्मी घटनास्थल के पास मौजूद थे, बावजूद इसके इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच में आज मृतक के छोटे भाई चंदन तिवारी और एक अन्य गवाह ने आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। इससे पहले मृतक के माता पिता समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 141.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल अररिया और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
2: दिनांक 15 जुलाई राज्य के किशनगंज एवं अररिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी एवं सुपौल जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान से 102 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। बागमती नदी रून्नी सैदपुर में लाल निशान से लगभग 100 सेंटीमीटर, कमला बलान झंझारपुर में 120 सेंटीमीटर और कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में 113 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। वहीं महानंदा, परमान और अधवारा समूह की नदियों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इधर हमारी सहरसा संवाददाता ने बताया कि जिले के बनमा इठहरी प्रखंड अंतर्गत सहुरिया पंचायत में परसाहा कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से राम पोखर और भेड़ा गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड के अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। निगरानी की अदालत ने पिछले साल दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन किया है। मौके से 3 अपराधियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। शिवहर स्थित यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक संतोष कुमार को पुलिस ने 1,96,000 रूपये धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। खगड़िया पुलिस ने 25,000 रूपये के इनामी अपराधी सतीश यादव को गोगरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। किशनगंज जिले के सुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत कादोगांव रेलवे ब्रिज के पास से SSB और पुलिस की टीम ने 326 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सुनी लोगों की शिकायतें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। जन शक्ति जनता दल की वीणा मानवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द। ईरान अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष की चपेट में आने से गोपालगंज के एक युवक की मौत। दुबई में मर्चेंट शिप पर तैनात था युवक। और मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की।

इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
2: बक्सर जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा में 7,032 अभ्यर्थी शामिल हुए। इधर खरीफ फसलों की सिंचाई व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने सोन नहर की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों को किसानों तक समय पर सिंचाई का पानी पहुंचाने, नहरों से अतिक्रमण हटाने तथा रिसाव करने वाले स्थानों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। वहीं बाढ़ और सुखाड़ की तैयारी की समीक्षा करते हुए राहत एवं बचाव व्यवस्था हर समय तैयार रखने को कहा गया। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के 1,44,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में मई माह की पेंशन राशि DBT के माध्यम से भेजी गई। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत 4,129 BPL और कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बीच जिले के सभी प्रखंडों में सहयोग से जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर आधार अद्यतन की समीक्षा बैठक में 57,000 से अधिक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक अपडेट लंबित रहने पर विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई में 56 शिकायतों की सुनवाई की, जबकि जिला खनिज फाउंडेशन की बैठक में कई विकास योजनाओं की मंजूरी दी गई। उधर उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने डोमराव प्रखंड के 7 निश क्षेत्र की योजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया। नहर निर्माण में लापरवाही मिलने पर समेत अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। वहीं शिक्षा विभाग की टीम ने राजपुर प्रखंड के 2 संस्कृत विद्यालयों और 1 मदरसे का निरीक्षण किया गया। इस बीच श्रम विभाग ने डुमराव और राजपुर में अभियान चलाकर 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। वहीं RPF और GRP ने संयुक्त कार्रवाई में ट्रेन में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चौसा चेक पोस्ट उत्पाद विभाग ने लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के शराब से लदा ट्रक वाहन जब्त किया। उधर पांडे पट्टी रेलवे गुमटी पर अंतर्राष्ट्रीय रेलवे क्रॉसिंग जागरूकता दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्म शताब्दी समारोह में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि उनके जीवन और विचारों से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 18 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि TRE-4 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी माह बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। उधर कुढ़िया APF में किसानों को मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने इसे कम लागत में अधिक आय का बेहतर विकल्प बताया। राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई और बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धरना दिया। वहीं जिला कांग्रेस ने इटाही रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रतिनिधि मंडल ने

0: बक्सर को पर्यटक मंडल घोषित करने और विश्वामित्र कॉरिडोर के निर्माण कराने की मांग को लेकर पटना में धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य से मुलाकात की।
1: और अब सुनिए भोजपुर जिले की हलचल, इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
2: भोजपुर में चर्चित भरत तिवारी प्रकरण की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। न्यायिक जांच आयोग ने मामले की सुनवाई तेज कर दी है। आयोग के समक्ष मृतक भरत तिवारी के माता पिता के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं आरा सिविल कोर्ट में भी उनकी मां, भाई और भाभी के बयान दर्ज कराए गए। इधर परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई है। गौरतलब है कि इस मामले में राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है, जबकि संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के साथ कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।
3: गुवाही भइल है तीनों आदमी के, चंदन देवी और सुमन देवी, चालू हो जाए आधार पकड़ हुई, बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं।
2: इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उदवंत नगर प्रखंड के कार्य साथ में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत वाणासुर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास किया। उन्होंने अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था पर सख्ती से काम करने के निर्देश दिए थे। वहीं जिले को टीबी मुक्त बनाने के अभियान के तहत 6,85,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने महादलित टोलों और हाई रिस्क क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर प्रतिदिन बड़े पैमाने पर टीबी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और बोनाफाइड जर्नलिस्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में संचालित यूजी इंटर्नशिप कार्यक्रम के पहले चरण में 1700 से अधिक छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। इंटर्नशिप के दौरान सामाजिक सर्वेक्षण, मीडिया अध्ययन और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर कार्य कराया जाएगा। उधर कोइलोर प्रखंड निवासी शहीद वायु अग्निवीर दानिश आलम के माता पिता को राज्य सरकार की ओर से 21 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने परिजनों को सहायता राशि का चेक सौंपा।
1: अभी आप सुन रहे थे बक्सर और भोजपुर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शेखर, जबकि भोजपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
4: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। ई मनपसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा।

तो श्रोताओं, अभी आपने इल्ज़ाम फिल्म का यह गीत सुना। नाज़िया हसन और जोहेब हसन की आवाज़ों में अनजान के लिखे गीत की तर्ज बनाई थी बप्पी लहरी ने, और इस गीत को सुनना चाहते थे एक्शन कॉन्वेंट नोखा से सुनील दुबे, प्रमोद दुबे, संजय तिवारी और आपके ढेर सारे मित्रगण। और तंदुनी चौक बिक्रमगंज से हमें आपने एसएमएस किया था, आप हैं बजरंगबली पांडे, कन्हैया तिवारी और राहुल जी, संजय दीवाना, तो आपकी फरमाइशें हमने पूरी की। और इसी गीत के लिए, इल्ज़ाम फिल्म के इसी गीत के लिए हमें एक और मेल मिलता हुआ दिखा। जी हाँ, आप हैं पीरो से, प्रशांत किशोर प्रभु जी और आपके मित्रगण। श्रोताओं, चलिए हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जीना तेरी गली में। जी हाँ, यह नाम है उस फिल्म का जिसका गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गायक कलाकार हैं नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल। रविंद्र रावल ने गीत लिखा है, स्वरबद्ध किया है बाबुल बोस ने, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोतागण। कंपनी सराय सासाराम से राजू दुबे और आपके मित्रगण, और ये अस्तुपुरा मऊ नाथ भंजन से उस्मान अली अंसारी, आसिफ अली अंसारी, अरमान अली अंसारी, अरबाज अली अंसारी, सनूबर परवीन अंसारी, शुमैला परवीन अंसारी, आमना खातून अंसारी, रियाज सऊदी अरब से अशरफ अली अंसारी, सारिक अली अंसारी और आपके मित्रगण, और जलालाबाद वेस्ट से आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश आपकी भी मिली है, आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, और ये आपने दतरेंगी से हमें एसएमएस किया है। श्रोताओं, हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का यह गीत, फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में।

कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और ऋषि कपूर की आवाजों में आनंद बख्शी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म का नाम है कर्ज।
1: कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान।

सिंह परिवार की ओर से ये फरमाइश है। और साथ ही साथ गांधी नगर सासाराम से आप हैं माधवेंद्र, अमरेंद्र और यशराज। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, महल फिल्म का बहुत ही शानदार नगमा, किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी की शब्द रचना है और सुरों में ढाला है कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आप हैं बीटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, और लखमीनिया जिला बेगूसराय से आप हैं शमीम अहमद राइन। और कर्नाटका स्टेट चिन्ना तिरुपति से आप हैं प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद और मानवित रमेश। और एक और इस गीत के लिए फरमाइश है, जी हाँ, आप हैं नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहाकर, निर्मला नोहाकर, विशाल नोहाकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मुरहेकर। साथ ही साथ गांव चौहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। तो लीजिए सुनिए महल फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा, ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

इस गीत को सुनना चाहते थे गोरक्षणी 11 ई से गोविंद जी, गोपाल जी, जनार्दन भाई और आपके मित्रगण, और न्यू एरिया सासाराम से सुबोध कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, प्रमोद सिंह और

बहुत ही प्यारा नगमा आपने सुना। और अब आइए हम लेते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। फिल्म का नाम है फूल और कांटे। जी हाँ, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के जुगल स्वरों में आइए सुन लेते हैं समीर का लिखा गीता गीत और नदीम श्रवण का संगीत। और फरमाइशें आप सब की हैं श्रोताओं। आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी और आपकी सहेलियां, और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने हमें पद्मा टॉकीज नेपा नगर से मेल किया है। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम पीपरी से हमारे श्रोतागण दुर्गा तिवारी, अशोक चौबे, बबलू चौबे, पप्पू चौबे, मुन्ना चौबे और समस्त चौबे परिवार की ओर से ये फरमाइश है। साथ ही ग्राम नहौना प्रखंड सासाराम से आप हैं भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का नगमा इन शब्दों के साथ की मेरे आंसू संभाल कर रखना, ये तराजू संभाल कर रखना, फूल की उम्र तो बहुत कम है, तुम खुशबू संभाल कर रखना। बहुत ही प्यारा नगमा, लीजिए सुनिए।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आइए सुन लेते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है इंतकाम। और इस गीत को सुनने के लिए हमें आपने मेल किया है, जी हाँ, आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से आप हैं, चंडीगढ़ से आप हैं, जमा करेंगे, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने भी हमें मेल किया है। और साथ ही साथ इस गीत के लिए पुरानी चौक नारायण स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित जी ने भी मेल किया है। और साथ ही साथ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से इस गीत को सुनने वाले आप हैं अभिजीत गंवाड़कर, राही सरिता गंवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गंवाड़कर, अर्जुन गंवाड़कर टुक टुक, और एक और फरमाइश इस गीत के लिए है, जी हाँ, आप हैं रायपुर ताजपुर मोरवा, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय, कारी मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जय श्री, और ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ ने भी हमें मेल किया है इस गीत के लिए। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब RGVOAH 844D गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आप हैं बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, राम देवरा से दिनेश चौहान और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, और मेरठ कैंट से आप हैं दिग्दर्शन गॉड, कविता, करण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। तो चलिए हम आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवा रहे हैं, बहुत ही प्यारा नगमा, इन शब्दों के साथ कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत होंठ का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वह उतना मीठा गाता है। चलिए गीत की मिठास को पहचानिए, समझिए, परखिए।

और अब कार्यक्रम के आखिर में रफू चक्कर फिल्म का एक गीत सुन लेते हैं। इसे सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, मतीन भाई, शायक चांद, फारूक फूलवाले, और इसी गीत के लिए जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, और आप हैं वैष्णो कानूनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, और साथ ही साथ आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से आप हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, मारहरा दरवाज़ा एटा से आप हैं नबी हसन अब्बासी, सेन सेहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहैल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रशीद वारसी, और साथ ही साथ पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू बाबू, और वंडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, पार्थ रेडियो क्लब छात्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश।

आपके साथ साथ सकीबा आलिया इब्राहिम कमाल मेराज निसार पंकज कुमार आकाशी सासाराम से आपने हमें मेल किया है। और ये एक मेल दिख रहा है उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसु तासु अरुणव आनंद और सत्यम आनंद का। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने भी इस गीत को सुनना है चाहा है। पाकुड़ झारखंड से आपने हमें मेल किया था उत्तम कुमार भगत जी। चलिए सुनिए अपनी फरमाइश का ये गीत।

तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में गीतों का सफर बस यहीं तक। संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन

0: पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक।

0: तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: This is also one of the most ambitious...
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
4: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
5: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह

0: इबादत जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document, reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the
5: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 9 बजे हैं। लोकधारा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत नीलेश्वर मिश्रा की गई इस रचना से।

अभी आपने बालेश्वर प्रसाद और साथियों को सुना। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं एक शिव भजन आशा विभाकर की आवाज़ में।

आशा विभाकर के गए इसी शिव भजन के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं महफिल के तहत चंद गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत गुलाम अली की गई इस गजल से।

मेहदी हसन की गाई इसी रचना के साथ ही गज़लों की हमारी आज की ये महफिल अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।

संगीतकार रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीतकार रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

सन 1948 में रोशन मुंबई चले आए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक हो गए। खुर्शीद अनवर उन दिनों फिल्म सिंगार को संगीत से सजाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान रोशन की भेंट हुई फिल्मकार किदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नयन में संगीत दिया। बावरे नयन के निर्माता थे गायक मुकेश।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का यह सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए, रस रंग के तत्, कुछ हिंदी एल्बम सॉन्ग्स।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अमित कुमार के साथ अभी आपने सपना मुखर्जी को सुना, और इन्हीं एल्बम सॉन्ग्स के साथ ही आज का रस रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। चित्रपट तराने कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार।

जिंदगी का शिकवा इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तुम्हारे आने से दबे हुए जख्म हरे हो जाते हैं, क्योंकि जब तुम आती हो तो यादों का कारवां मुलाकातों का सैलाब बनकर उभरता है।

दुम हिला देती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ऐ फलक, मुझको मेरे माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी।

आ भी जाओ कि जिंदगी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। वादा करके वो कौन आया नहीं, शहर में आज रोशनी कम है।

कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। रात का अब इंतज़ार कौन करे, दिन में हाँ क्या क्या नहीं होता।

तो श्रोताओं, यह थी कार्यक्रम की आखिरी पेशकश और अब इन्हीं गीतों के साथ ही आज के चित्रपट तराने कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी चाहता है विदा। नमस्कार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

हमारे प्रातःकालीन प्रसारण सभा में 7:30 पर आप नित्य प्रति सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास और अपनी फरमाइशों के फिल्मी लग में आप सुनते हैं पसंद आपकी के तहत 8:20 पर।

प्रातः 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनते हैं समाचार प्रभात 8:15 पर देशभक्ति संगीत।

सुबह की सभा में पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 8:40 पर और 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका।

10:05 पर श्रम संसार और 10:30 पर सुनिएगा लोक माधुरी। दस बजकर 45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम रसधार। हेलो मनपसंद, आप रात्रि 7:50 पर सुनेंगे और हमारी बहनें अपना प्रसारण सुनेंगी घर आंगन 5:30 पर। लोकगीत आप सुनते हैं संध्या 6 बजे और रात्रि 9 बजे 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुनना नहीं भूलिएगा। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आर्द्रता 68% हो सकती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर

0: में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
0: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the